घन हर बूंद बसोरु मावल कुसम बसंत गणंत नयावे राव सस किरण उदर सागर को

धन गुरु अमरदास जी महाराज ऐसी ब्रिद मूर्ति हन जिन्हां दे जीवन दी छाप जगत नू ए उपदेश देंदी है कि उम्र दे किसे भी हिस्से विच मनुख नू निराश नहीं होना चाहिदा। चाहे शरीर बुढ़ा भी हो गया, बिरद भी हो गया, पर मनुख दे अंदर अगर उत्साह है, उमंग है, आशा है, तो बहुत वड्डे वड्डे कम उस अवस्था दे च भी हो सकदे ने जदके अक्सर बुढ़े पिछलोकी निराशा दे खड़ दे च जा गिरदे ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज दा जन्म पिंड बासर के जिला अमृतसर माता लक्ष्मी जी दी कुखों पिता तेज भान दे घर दे च होया। आप जी दा जन्म विसाख सुदी 14-1526 विच होया। आप जी दी संतान मोहरी जी, मोहन जी ते दो पुत्रियां दानी जी, भानी जी, ए आप जी दा ग्रस्थी जीवन सी। बच्चियां देच, परिवार देच, घर ग्रस्थी देच आप जीवन इस ढंग दा बरतीत कर रहे सन जैसे के पानी विच रहिंदा होया कमल। लेकिन फिर भी एक धू अंदर बनी रहिंदी सी कि परम आनंद वो जो समाधि है वो नसीब होवे। कहिंदे ने आपने इसी इच्छा नु मुख रख के थां थां ते तीर्थां दा विरटन कीता और अक्सर गाहे बगाहे हरिद्वार भी जांदे सन। एक दिन गंगा देच इशनान करके ठंड दे दिन सन रेत देच बैठे चरना नू पसार के पैर पसार के एक पांदा जो इल्मे निजूम देच माहिर सी ज्योतिषी सी लंघिया। उदी निगाह पसरे हुए चरना ते पै गई और उसने मत्था टेकया। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने रोकया, आख्या ब्राह्मण देवता मैं ते खत्री हां, तू ब्राह्मण है, कुल करके जात करके तो उच्चा है, मैनू क्यों मत्था टेकया। तो ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज थोड़े चरणा विच पदम है, ये पदम ते किसे ब्रह्म ज्ञानी दे चरणा विच होंदा है, ये पदम ते किसे पहुंची हुई रूह दे चरणा च होंदा है, थोड़े कदमां विच पदम। तां गुरु अमरदास जी महाराज बड़ी रूहानी मुस्कुराहट च कहन लगे, ब्राह्मण देवता मैं ते एक यात्री हां, बिल्कुल यात्री। ओ ब्राह्मण कहन लगा, महाराज ए बीज अजे अंकुरित नहीं होएगा, होया ए होण वाला है, और जदों ए बीज अंकुरित होवे है मैनू भुलना नहीं, मैं थोड़े चरना चावांगा, मैं थोड़े दर्शन करन लई फिर आवांगा। रब दी नेत

जो चल चल के पहुंचे ने परमात्मा दी गोद तक, साधना कर कर के पहुंचे ने परमात्मा दी गोद तक। ए गल वखरी है, साधना एक दिन दी कीती है, एक महीने दी कीती है, या साधना एक साल दी है, या एक जन्म दी है, या कई जन्मा दी है, ए उन्ना दे चलन दुते सी, पर पहुंचे हो साधना कर कर कई ने। इस श्रेणी दे जिड़े महापुरुष आंदे ने उन्ना नू कहंदे ने भगत संत। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे गुरबाणी दे नाल नाल भगतां दी बाणी है। भगत बाणी ते गुरबाणी दे कोई अंतर नहीं, अगर अंतर कोई करना भी होवे तो इतना ही है कि गुरु वो है जिसने अख खोली ते परमात्मा दी गोद सी, भगत वो है जो चल चल के पहुंचे है परमात्मा दी गोद तक। लेकिन दोहां ने गल उस गोद दी कीती है, उस परमात्मा दी कीती है, उस अकाल पुरख दी कीती है। तो कबीर ते खुद अपनी रचना दिच कबूल कर देने के पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। हे अकाल पुरख, पिछले जन्म दिच भी मैं तेरा सेवक से साधना करदा रहा, पर मेरी साधना सफल नहीं हुई क्योंकि मैं तेरी गोद तक नहीं पहुंचया, मैं तेरे दर तक नहीं पहुंच सकया। जीवन दा अंत हो गया रस्ते दिच, और अदकी तू मेर कर बख्शिश कर, मैं तेरी गोद तक पहुंचा, तेरे दर तक पहुंचा, तेरे घर तक पहुंचा। तो दूसरी श्रेणी दे मनुख आउंदे ने परम पुरख जो चल चल के परमात्मा दी गोद तक पहुंचे ने। तीसरे ओ ने जो दो कदम अग्गे चलदे ने एक कदम पिछे भी मुड़दे ने। उन्हां दा चलना बस ऐसा है, अग्गे भी गए पिछे भी चले गए, दान पुन भी कीता पर कुछ बेईमानी भी कर ली, सच भी बोल लिया झूठ भी बोल लिया, परोपकार भी कर लिया दुराचार भी कर लिया, अग्गे भी वधे पिछे भी मुड़े। ए तीसरी तरह दे साधक ने, और अक्सर रस्ते विच रह जांदे ने, ते धार्मिक दुनिया दे ए तीसरी कोटी दे मनुख ने। धार्मिक दुनिया दे चौथी श्रेणी दे ओ मनुख ने जो जीवन भर पुछदे ते रहंदे ने पर मार्ग ते कदी कदम नहीं रखदे, चलदे नहीं। जिन्हां दा जिक्र भाई गुरदास जी इंज करदे ने, पूछत है पथक ते मार्ग न धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। सिर्फ पुछदे ही रहंदे ने और सारी जिंदगी पुछदे ही बतीत कर छड़दे ने, मार्ग ते कदी कदम नहीं रखते, कदी पैर नहीं रखते। ये चौथी श्रेणी दे मनुख ने। पंजवी श्रेणी दा मनुख धार्मिक दुनिया दे च नहीं आउंदा, ओ मनुख है जिदी जिंदगी दे च धर्म कोई मसला ही नहीं, वो पुछदा भी नहीं, चलदा ते है ही नहीं, वो पुछदा भी नहीं, ओदी जिंदगी दी इसका कोई सवाल नहीं है, ईश्वर ओदी जिंदगी दी समस्या नहीं है, धर्म ओदे जीवन दी कोई लोड़ नहीं। ए बिल्कुल बेहोश सुत्ता होया मनुख है, इत्ते कोई बहुत वड्डी दुख दी चोट इसनू लगे ताई धर्म इदी जिंदगी दा मसला हो सकेगा, ताई ये थोड़ा सुचेत होके इस मार्ग ते चल सकेगा, वरना एते इसे तरीके नाल बेहोशी रे जिंदगी बतीत करदा है। और दुख हर हालत विच दुख नहीं, दुख दी चोट इस वास्ते है कि बंदा जागे, दुख दारू सुख रोग भया जां सुख ताम न होई, या केतियां दुख भूख सदमार, ए भेदा तेरी दाता। एक सूफी फकीर दा कहना है, जख्म जब भी कोई जहनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे, चोट खाते रहे गुनगुन

ही अपनी चिकनाई दे जाएगी। कम से कम जितनी देर तक मनुख पाठ करेगा इतना बहुत ते जरूर होवेगा कि मैं पाठ कर रहा, उतनी देर ते रसना गलत बयानी नहीं करेगी। चलो बाणी नहीं रही, बाणी दी चिकनाई ते रह जाएगी। इस वास्ते अगर अर्थ नहीं भी आउंदे, अंदर नहीं भी टिकी, मन नहीं भी जुड़िया, तां भी बाणी दा पाठ लाभकारी है। गुरु हर राय साहब जी महाराज दा ए संदेश ए उपदेश। साहिब गुरु हर राय साहब जी महाराज ने अपने उपदेशां राही सिख जगत नूं बार बार ए समझाया कि कदी प्रदर्शनी ना करना, नुमाइश नहीं करनी। जितना गुण जितनी समर्था थोड़े कोल है उतना ही प्रगट करने की कोशिश करनी। जो तुसी नहीं हो वो ना प्रगट करना, जो तुसी हो उसनु छुपाने की कोशिश भी ना करना। किसे हद तक मनुख की अद्धी शक्ति जो कुछ है उसनु छुपाने विच खर्च हो जाती है, ते अद्धी शक्ति जो कुछ ए नहीं है उनु प्रगट करने विच खर्च हो जाती है। इस तरह सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, अकार चला जाता है। श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज दिया दो संताना सन, दो बच्चे बाबा राम राय ते श्री गुरु हरि कृष्ण। गुरु हर राय साहब जी ने प्रण किया होया सी कि नै मलेच को दर्शन दे हैं, असी अपना पावन दर्शन मलेच नू नहीं देना, खास करके उस नू जो गुरु घर दा अत्यंत घातक है, घातक है। आखिर वकत दे सताधारियां ने आप जी दे नाल 2200 असवारां नू वेख के अपने लई खतरा समझिया। ए गल वखरी है कि कोमल हिरदे दे मालिक गुरु हर राय साहब जी महाराज उना नाल कोई वैर नहीं रखते सन। कहिंदे ने एक दफा शाहजहां दे लड़के दारा नू जो बाद विच बड़ा खुदा तरस होया, उसनों कुछ पेट दे इस ढंग दे भयानक रोग होए ते वैदा ने आख्या कि इतनी इतनी मिकदार दी हरड़ ते लौंग होवे, इतने वजन दी, ते उस दी औषधि बना के रोग दूर कीता जा सकता है। उस वक्त ए चीजां केवल गुरु हर राय साहब जी महाराज दे तोशे खाने ची सन, ता आपने फौरन भिजवा दितियां। कोमल हिरदे दे मालिक ने अपने हिरदे विच कोई वैर भाव नहीं रखिया। साहिब गुरु हर राय साहब जी महाराज इसे तरीके नाल गुरबाणी दा उपदेश देंदे होए जगत दा कल्याण करदे रहे। तां गुरु घर दी परंपरा अनुसार गुरगद्दी दी चोण विच आपने भी ओही कुछ कीता जो गुरु रामदास जी महाराज ने कीता सी। वड्डे पुत्रां नूं छड़ के छोटे बच्चे गुरु अर्जन देव जी महाराज नू आपने गद्दी दिती। गुरु हर राय साहब जी महाराज ने भी ऐसा कीता, वड्डे साहिबजादे राम राय नू छड़ के श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज नू जो उस वक्त केवल 5.5 वर्यां दे सन गद्दी ते बिठाया। 5.5 वर्य दे बालक श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने जद गद्दी संभाली, गुरु नानक दी विरासत दे मालिक बने, तां चारों पासे चेमे गोईयां भी होईयां। हैं 5.5 साल दा बच्चा और गुरु चाणक ते इस तरह दे होर आलमां दे कथन अनुसार मनुख दे अंदर संजीदगी दूर दृष्टि कोई 35 साल तो बाद शुरू होंदी है। प्रौढ़ता बालग होना हर पहलू दी सूझ समझ जेड़ी है ए 35 साल तो बाद आरंभ होंदी है। चाणक दा ऐसा कहना है किसे नूं राज तिलक दे के राज गद्दी ते बिठाना है, समाज सुधारक बनाना है या धार्मिक मुखी बनाना है, तां उस दी उम्र 35 साल तो थल्ले नहीं होनी चाहिए। इस असूल नूं बड़े करड़े ढंग नाल भारतवासी मनदे आए, स्याणे लोग मनदे आए, जिसनु बहुत वड्डी जिम्मेवारी देनी है
कम से कम उस दे संजीदगी दूरदृष्टि होनी चाहिए है।

निर्वैर हिरदा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इस तरह है जिवें एक डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करन लगया नश्तर चलांदा है, छुरा चलांदा है, चाकू चलांदा है, लेकिन वैर भाव करके नहीं। वो छुरा वो नश्तर दे चो मरीज की जिंदगी लभ रहा है, ओदी हयात लभ रहा है। तो छुरा डॉक्टर दे हथ दे च है, छुरा कातल दे हथ दे च भी है। कातल छुरे दे च दूसरे की मौत लभ रहा है और डॉक्टर छुरे दे च दूसरे की जिंदगी लभ रहा है। छुरा चलाया डॉक्टर ने, मरीज मर गया नहीं बचया, तो कतल का मुकदमा नहीं दर्ज होगा क्योंकि उसका इरादा ही नहीं सी। कातल ने किसी नूं छुरा मारिया लेकिन अगला नहीं मरिया, तां वी इरादा है कतल का मुकदमा उसते चलेगा क्योंकि उसका इरादा सी मारन का। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जो इरादा है वह तो एक जर्राह का इरादा है, डॉक्टर का इरादा है, फालतू मवाद नूं कढ देईए। जैसे बांह दे च बहुत मवाद भर जाए या पैर दे च, तो डॉक्टर कहिंदा है समुचे जिस्म नूं बचाउण दी खातर यह पैर कटना पएगा, यह बांह कटनी पैणी। कई दफा समुचे देश ते देश दी संस्कृति नूं बचाउण दी खातर कुछ एक नूं एक पासे करना पैंदा है, तां देश बचदा है, तां देश दी संस्कृति बचदी है। एक आलम दा कहना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनेकां रूप ने। जद मैं देखदा ओ मैदान ने जंग विच लड़ रहे ने, तो एक सिपाही प्रतीत होंदे ने, योद्धा प्रतीत होंदे ने, पर जद पौंटा साहब विच हथ विच कलम लैके कुछ लिख रहे ने ते कलम विचों नगमे निकल रहे ने, कविता निकल रही है, तां आप एक कवि प्रतीत होंदे ने, शायर प्रतीत होंदे ने। जद उन्हां नूं सोने दे सिंघासन ते बैठा देखीदा है, चौर हो रही है, नजराने भेट हो रहे ने, लोकी सजदे विच ने, तां इंज प्रतीत होंदा है जैसे एक शहनशाह सिंघासन ते बैठा है। पर जद पंजां ही प्यारियां दे अगों हथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खड़े ने ते अमृत दी दात मंगदे ने, उदों भिखारी प्रतीत होंदे ने। अज तक जिन्ने दरवेश होए ने वो बादशाह नहीं होए, और जो बादशाह होए ने वो दरवेश नहीं होए। जद किसे बादशाह नूं दरवेश बनन दा शौक जा गया है, उन्हें बादशाहत नूं लत मारी है। भर्तरी ने, राजा गोपी चंद ने, ते इस पद्धर दे होर महापुरशां ने राज सिंघासन नूं लत मार के संतपणा कबूल कीता, योगी बने, सिद्ध बने, संत बने, दरवेश बने। ते जद कदी किसे दरवेश दे अंदर, संत दे अंदर राजा बनन दा शौक पैदा होया, तो उन्हें संतगिरी छड़ दित्ती, उन्हें दरवेशी छड़ दित्ती। दुनिया विच एक वाहिद मुकम्मल इंसान आया, पूर्ण पुरख आया, जिन्हें दरवेशी दी खातर बादशाहत नहीं छड़ी और जिन्हें बादशाहत दी खातर दरवेशी नहीं छड़ी। तदी ते भाई साहब भाई नंद लाल नूं कहना पै, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बादशाह भी ने, दरवेश भी ने। आप दियां अनेकां महान रचनावां ने, दसम ग्रंथ दी रचना आपने पौंटा साहब विच कीती, जिहदे विच जाप साहब, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक, चंडी दीवार, भगवती दीवार, ज्ञान प्रबोध, कृष्णा अवतार, रामा अवतार, वरस के 24 अवतारां दी कथा, ए महान रचना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने जगत दी झोली विच पाई है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक अदुत्ती शायर ने, कलम दे धनी ने, महान लिखारी ने, और उस देच आपने साफ ए भी कर दिता है कि बहुत कुछ मैं अनुवाद कीता है, दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर बासना।

करोधं कदन करुणान उपर्जते बिखयंत जीवं वसंकरोत निरतं करोत जथामर्कटे अनेक शासन अनेके शासन ताड़ंत जमदूते तव संगे अधमंगनरे दीन दुख भंजन

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅਗਨ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਇਹ ਪਰਬਲ ਅਗਨੀ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕ੍ਰੋਧ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਕਾਮਨਾ ਧਨ ਦੀ, ਕਾਮਨਾ ਸਤਾ ਦੀ। ਸਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਲੋਭ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਲੋਭ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੋਭ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਲੋਭ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਭ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚਬਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ, ਸਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਲੋਭ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਅਹੰਕਾਰ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਦਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਦਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧੀ
महामूढ़ है, प्रेमी ज्ञानी है, स्याणा है, सूझवान है, सुचेत है। तदिति कहने ने क्रोध पैदा ही अचेत अवस्था तो आंदा है। उर्दू दी कहावत, गुस्सा बेवकूफी से शुरू होकर पश्चाताप पे जाके खत्म हो जाता है। क्रोध अगर एक मेंबर दे एक सदस्य दे घर दे एक प्राणी दे पैदा हो जाए तो सारा घर महाभारत दा अखाड़ा बन जाता है। घरेलू युद्ध, घर दे कलेश। पर यही परिवार जे पूरे दा पूरा किधरे क्रोधी हो जाए तो सारे महल्ले नूं महाभारत बना देंदा है। किधरे सारा महल्ला क्रोध दी अगन दे प्रचंड अगन दे जलन लग पवे तो फिर देखण दी चाया है ए पूरा महल्ला सारे शहर नूं जला के खाक कर देने। सारा शहर महाभारत बन जांदा है। इसी तरीके नाल एक मुल्क दा क्रोध किसे मुल्क प्रति जंग दा कारण बन जांदा है। और थोड़ा थोड़ा करके जब सारी दुनिया दा क्रोध यकजा होंदा है, कठा होंदा है, उदो ही विश्व युद्ध होंदा है, वर्ल्ड वार हो जांदी है। एक सथल महाभारत नहीं, सारी दुनिया महाभारत बन जांदी है। बड़ा भारी विनाश होंदा है मनुखता दा। हर पासे कबरां ही कबरां, हर पासे शमशान ही शमशान। सिर्फ शहर दे एक कोने विच शमशान घाट नहीं, सारी दुनिया शमशान घाट बन जाती है। क्रोध ता ऐसी अगन है सारी मनुखता नूं जला के खाक कर देंदी है। क्रोध अगन विद्वान ऐसे भी कहते ने और प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है कि खूबसूरत फुलां दा बीज अत्यंत करूप ते कठोर होंदा है। पर इना कठोर और करूप बीजा नू अनुकूल धरती मिल जाए, वातावरण मिल जाए, मौसम मिल जाए तो इसे कठोरता विचों कोमलता झलकन लग पैंदी है। इसे क्रूपता विचों सुंदरता डुलन लग पैंदी है। उसे निर्गंध विचों चारों पासे सुगंध फैलन लग पैंदी है। कठोर से बीज लेकिन इस विचों कोमलता निकल सकती है। शक्ति है तं क्रोध है, शक्ति है तं दया है। शक्ति है तं क्रोध है, शक्ति है तं प्रेम है। तो क्रोध एक बीज दी तरह है, कुरूप सही कठोर सही लेकिन बीज है। असि देखते हैं कि धार्मिक मंदिरां विच पूजा सथलां विच लोकी फुल अर्पण करते ने, पुष्प भेंट करते ने। अगर कोई तार्किक मनुख बारों गीटियां ते पत्थर चुक ले आवे, सतगुरां दे अगों भेंट करे, किसे मंदिर दे चढ़ावे, लोकी कहणगे मूड है, नादान है, ना समझ है, पागल है। पर वो तार्किक तर्क खड़ी कर दे
अगर फुल भेंट हो सकते ने तो पत्थर क्यों नहीं भेंट हो सकते, पुष्प चढ़ाए जा सकते ने तो एक कंकर ते गीटियां क्यों ने नजराने वजों पेश कीतियां जा सकती हैं। उसकी तर्क का समाधान इंज करना पड़ेगा, पत्थर करूप है, पत्थर निर्गंध है, पत्थर कठोर है, फूल कोमल है, फूल सुगंधित है, फूल सुंदर है। सुंदरता नजराने वजों भेंट कीती जा सकती है, कोमलता सुगंध अर्पण कीती जा सकती है, कठोरता करूपता ते निर्गंध नहीं। फुल धर्म मंदरां दे देवतियां दे शिंगार बनदे ने, शोभा बनदे ने धार्मिक मंदरां दी, पर जो स्वयं फुल दी तरह हो जाए, अपने मन नूं फुल दी तरह कर देवे, परमात्मा दे कंठ दा ओहार बन जांदा है, उस दी दुनिया महान हो जाती है, वो ते शिंगार बन जाता है धर्म दा। जो कोमल हो गया है, सुगंधित हो गया है, और कोमल हो गया है, सुंदर हो गया है, सुगंधित हो गया है, क्रोध ही कोमल हो सकता है, क्रोध सुगंधित हो सकता है, क्रोध बहुत वड्डी सुंदरता अपने विचों पैदा कर सकता है, बीज है। मूर्ख इस बीज नो अपने कोल रख लेंदा है, सेना इस बीज नो गोड़दा है, बोंदा है, और बोना बस यही है अपने मन नो प्रभु नो समर्पित करना, नाम भी जोड़ना। क्रोध नाल भरिया होया यही मन दया नाल भर जांदा है, रब्बी स्वपन नाल भर जांदा है, अत्यंत कोमलता नाल भर जांदा है। इस नूं खत्म करन दा यही इलाज है प्रभु चिंतन, प्रभु चिंतन, उस विच अपना मन जोड़ना। सार कितावली दा करता बहुत सुंदर कहिंदा है कि धर्म पैदा किवें हुंदा है, धर्म नष्ट किवें हुंदा है। आखिर धर्म धर्म देच दया आ जांदी है, धर्म देच संजम आ जांदा है, धर्म देच संतोख आ जांदा है, धर्म दे सारे दैवी गुण आ जांदे ने, शील संजम आ जांदा है। यह धर्म किस तरह पैदा होंदा है और ये धर्म किवें विनिष्ट होंदा है, नास होंदा है, तो सार कितावली दा करता इंज लिखदा है।

मान कर धर्म वधे नित रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नु सत्य नु रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे दे टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उना दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नू जला के रख दें दी कितने दिनों की साधना कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छह महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है

ਪੜ੍ਹੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੂਲ ਗਰ ਚਾਹੇ ਤੋ ਗੁਲਸਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੰਦ ਬੂੰਦ ਗਰ ਚਾਹੇ ਤੋ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਫੂਲ ਗਰ ਚਾਹੇ ਤੋ ਗੁਲਸਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਗਰ ਚਾਹੇ ਤੋ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਖੂਨ ਕੇ ਕਤਰੇ ਮੇ ਵੋ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਕੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕਾ ਅਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਡ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਤਰੰਗਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਇਹੀ ਵੇਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੂਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੂਨ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕਈ ਨੇ, ਇਸਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ, ਦਇਆ ਵਧੇ, ਤੋ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਲਾਭ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਜੀਵਨ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਦਿਆਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਮਾਓ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਲਾਂ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਔਰ ਇਹੀ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ। ਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਭਾਵ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
इस वास्ते विनम्र मनुख हर वक्त धनवाद नाल भरे होया है और हर एक दे प्रति धनवाद नाल भरे होया है। ओ परमात्मा दा धनवाद करदा है, परमात्मा दी कृत दा धनवाद करदा है। ए प्रभु सूरज बन के मैनू चानना दे रहे हैं, हवा बन के तू मैनू प्राण दे रहे हैं, धरती बन के तू मैनू टिकाणा दे रहे हैं। शांतमई हर वक्त ते हर एक दे प्रति धनवाद नाल भरे होया है, क्रोधी हर वक्त ते हर एक दे प्रति गिलियां नाल भरे होया है, गिलियां नाल भरे होया है। हर वक्त धनवाद नाल भरे रहना, प्रार्थना नाल भरे रहना, शुकराने नाल भरे रहना, ऐसी अवस्था मनुख नु भगवान दा रूप बना दिंदी है। हर वक्त गिलियां नाल भरे रहना, शिकवियां नाल भरे रहना, क्रोध नाल भरे रहना मनुख नु शैतान दा रूप बना के रख दिंदी है। इस वास्ते क्रोधी नु शैतान कहिंदे ने, शांतमई नु भगवान कहिंदे ने। आया ते मनुख भगवान होण लई है पर क्रोध करके शैतान बन जाता है। हर वक्त धनवाद करन लई बड़ी भारी सियाणप चाहिए। थोड़ा सोच, तू छोटा सी, मासूम बालक सी, परमात्मा मां बन के तेरा मददगार बने है, पिता बन के तेरा सहायक बने है, एक गोद दे चुके तेनु खिडांदी रही, एक कंधे दे उपर चुक के तेनु लड़ांदा रहा। देखते सही ए मां ए पिता किते भगवान ते नहीं, मात पिता सुत बंधप भाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। सतगुरां दी बाणी, हे प्रभु हे पार ब्रह्म, तू मां बन के मददगार बने है, तू पिता बन के सहायक बने है, शुक्र तेरा शुक्र तेरा। आज बुढ़ा हो गया, बिरद हो गया, पुत्र पानी दा गिलास ले आया, पोतरा थाली देच रोटी लेके आ गया, बिरद भाया ऊपर साक सैन, मुख अपयायो बैठ को देन। बिरद हो गए साक संग बंदी तेरे मुंह दे ग्राइयां दे रहे, तेरे हाथ दे सब कुछ पकड़ा रहे ने। हे प्रभु इतों ही है, मात पिता सुत बंधप भाई, हुन सुत बनके पुत बनके पोतरा बनके तू मेरा मददगार बने हुए है। जद मैं छोटा सी तू मां बाप बनके मेरा मददगार बनया, जद मैं बुढ़ा हो गया कमजोर हो गया पुत्र बनके जवान पोतरा बनके तू मेरा मददगार होया है। जरा सोचते सही यह सोचनी निर्माण बना देगी, यह सोचनी धनवाद नाल भर देगी, यह सोचनी प्रार्थना नाल भर देगी। ऐसी हालत विच मनुख भगवान दा रूप हो जाता है। पर गिले ने शिकवे ने मां ते गिले, प्यो ते गिले, पुत्र ते गिले, पोतरियां ते गिले, पड़ोसियां ते गिले, शहर वासियां ते गिले, सारे संसार ते गिले, फिर रब ते गिले। इतना प्रबल क्रोध शैतान दा रूप हो गया। क्रोधी भूल के भी नहीं सोचदा शायद मेरा ही कसूर है, और शांतमई मनुख कदी अपने संताप लई दूजे नु दोषी ठहरांदा ही नहीं। वो ते साफ कह देंदा है, मुझ अवगुण सहनाई दोष, मेरा ही दोष है, मेरा ही कसूर है। ऐसी सोचनी निर्माण बना देंदी है, दूजियां दा कसूर है, दूजियां दी ज्यादती है,
ऐसा क्रोध नाल भर दें दिए। और क्रोध दी अगन जिथे बल रही है उथे हरी बनस्पति किथे, उथे फुल किथे, उथे फल किथे। असी वेखदे हां बहुत लोग चल रही है, धुप पै रही है, भयंकर गर्मी है, फुल मुरझा जांदे ने, नहीं खिड़दे, फुलां दे बूटे पैदा भी नहीं आउंदे। पर बर्फ पै रही है, कक्कर पै रहे है, पानी जम रहे ने, सीत लहर चल रही है, कोमल फुलां दे बूटे नहीं पैदा आउंदे, फुल नहीं खिड़दे। फुल उदों खिड़दे ने ना बहुती ठंड होवे ना बहुती गर्मी होवे। उस मौसम नूं कहिंदे ने मौसमे बहार, बसंत बहार, मौसमे बहार। फुल खिड़दे ने बहार दे, इतनी गर्मी है, खिड़े लई मददगार हो रही है, ऐसी ठंड है, खिड़े लई सहायक हो रही है। कक्कर ते बर्फ दी तरह जमया होया मनुख ठंडा कायर आउंदा है, बुजदिल आउंदा है। वो सच दे पक्ष दे च नहीं खड़ा हो सकदा, सच बोल नहीं सकदा, शहादत दे नहीं सकदा सच दी। पर बहुत गर्म मनुख जालम होंदा है, दुष्ट होंदा है, हर एक नूं पैरां दे थले लिताड़दा है, कुचलदा है। तो जिथे खून विच बहुत गर्मी है, जीवन विच खेड़ा नहीं आउंदा। जिथे बहुत ठंडक है उथे भी खेड़ा नहीं आउंदा। जैसे कि असीं बाहर देखदे हां, जद बाहर जमीन ते लू चल रही है, धुप अग वरसा रही है, फुल नहीं खिड़दे। पर बाहर सीत लहर चल रही है, बर्फ पै रही है, फुल नहीं खिड़दे। महान संत कवि और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे हजूरी कवि भाई साहब भाई नंदलाल इस दृश्य नूं अपने कीमती शब्दां विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान करदे ने। असी बहुत गर्म जोनां दे चलंगे आ, शेर है, चीता है, बगयाड़ है, बाज है, इल है, कौवे ने, इस तरह दी बहुत गर्म जूनियां दे चो लंगे हैं, गर्म बनस्पति दे चो, गर्म सुभा दे पंछी, गर्म सुभा दे चो पाए। फिर ऐसे चो भी लंगे हैं, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे। लोमड़ी है, गिद्दड़ है, रेशम दे कीड़े ने, और इस तरह कुछ होर मासूम पंछी ने, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे। कोई भी चावे हमला कर देवे, बहुत गर्म, बहुत गर्म। हर एक ते हमला करना और हर वक्त हमला करना, इस तरह दियां जोना दे चों लंघ चुके हैं। भाई साहब कहिंदे ने हुण ते मनुखा जन्म दी बहार आई है, ए मानुष तन, ए मनुखी जिंदगी, ए ते बहार है। ते जद बहार है तो फिर मनुख जिवें बहार दे च फुल खिड़दे ने, तू भी खिड़ जा, तू मुरझा ना, तू कुमला ना, तू खिड़। बड़े सुंदर बोलने, बाहोश बाश

और चौतर की मत दूर निवारों। अंधा कर देंगा जिन्हां दियां निगाहां बड़ियां लंबियां ने, जो दूर तक वेखदे ने अपने पैरां नूं भी नहीं देख सकनगे कित्थे खड़े आ, मैनूं भेज के ते देखो। अंधा कर देंगा जो पारदर्शी ने, पार तक देखदे ने और आर भी नहीं दिखाई देगा। जो लंबियां निगाहां रखदे ने, लंबी नजर रखदे ने, दूर दृष्टा रखदे ने, ए भी नहीं देख सकने कि कित्थे खड़े हैं, मैनू भेज के देखो। अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। जिहड़े विचारक ने, सूझवान ने, पागल करके रख देंगा, हिला देंगा उन्हां दी सोचनी नूं, हिला देंगा उन्हां दी विचार शक्ति नूं। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। धीरजवान नूं, सबरवान नूं मैं बेसबरा करके रख देंगा, जल्दबाज बना देंगा। क्रोधी बहुत जल्दबाज होता है, जल्दबाज बहुत क्रोधी होता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बड़े सुंदर वाक जफरनामे दे आपने औरंगजेब नूं इंज लिखे है, चे खुश गुफ्त तो फिर दो सीए खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना। ऐ औरंगजेब, कितना सुंदर लिखे है तेरे हम दीन जनाब फिरदौसी ने, ईरान दा मायानाज शायर, महान सूझवान, दूरदृष्ट है। औरंगजेब, चल तू मेरे बोलां तो कुछ नहीं सिखिया, ना सिखना चाहना है, कम से कम फिरदौसी नूं पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे बोल सुन लेंदा। चे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां के जूदी बद कार आहिर मना। कितना सोना उसने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना दा कम है। तुम बहुत जल्दी की थी क्रोधी, बहुत जल्दबाज आंदा है तू, इसी जल्दबाजी दे प्यो नूं कैद कीता, भरावां नूं कतल कीता, भैन जहां आरा नूं भी जेल देच पाया। और ऐ औरंगजेब, तेरी इस जल्दबाजी ते इस क्रोध ने पता नहीं कितने मासूमां दी जान ली। सरमद जैसे सूफी फकीर, फिर मेरे मासूम लड़ ले, फिर त्याग ते वैराग दी मूर्ति, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी शहादत, सब तेरे क्रोध दा कारनामा, सब तेरी जल्दबाजी दा कारनामा। तू रंचक मात्र भी सोचिया नहीं। पंडित गुलाब सिंह जी ठीक रखते ने, क्रोध कह रहे है सोचेगा ही नहीं मनुख, उस दे धीरज ही नहीं रहेगा, दूरदृष्टा ही नहीं रहेगी, जितना सियाणा होवेगा मूर्ख हो जाएगा। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। हित कारज नाए पिखे कबही, जिनके उर भीतर मैं पग धारूं।

कलम पट संग सिर मोरे अनक लहरी कलोलते धावंत जिया बहु परिकारन अनेक भांत बहु डोलते।

ईमान बेचना है, धर्म बेचना है, सब कुछ बेचना है। वैश शब्द पे उर्दू फारसी दा बाजार विच बैठ के जिड़ी स्त्री अपनी असमत बेच दी है उदे लिए शब्द है वैश्या। वैश्या सिर्फ असमत बेच दी है और वाकई असमत बिक गई तो सब कुछ बिक जाता है। कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देता है, कोई अपनी असमत बेच के सब कुछ बेच देती है। इसनु मैं फिर दोहरावा, कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देता है, कोई असमत बेच के अपना सब कुछ बेच देती है। वैश वैशिया दोवें निकट ने, एक ही सिंघासन ते बैठने। कला बेचनी है, ज्ञान बेचना है, धर्म बेचना है, ईमान बेचना है, कथा बेचनी है, कीर्तन बेचना है। समा लंघ गया जब नजराने पेट आंदे सन, पेटा आंदी सी, नहीं मुल चाहिदा है। ते जद मुल चाहिदा है तो ज्ञान बिक गया, जद मुल चाहिदा है तो कीर्तन बिक गया, जद मुल चाहिदा है तो कथा बिक गई, जद मुल चाहिदा है तो धर्म बिक गया, सेवा बिक गई, ईमान बिक गया। मुल चाहिदा है और जिसनों वड्डा मुल चाहिदा है बेच देगा इज्जत, बेच देगा असमत, बेच देगा शराफत, बेच देगा अपना विश्वास, सब कुछ बेचेगा। वैश नाल धर्म नहीं चलता। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अफसोस नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने, सारी सृष्टि इंज कह लो बहु गिणती देच वैश हो गई है, धर्म व्यापक पद्धर ते नहीं चल रहा। ओया किसी एक कद मनुख नाल चल रहा है, हजारां च लखां च कोई एक कद, तो यह कोई बहुत गिणती नहीं। सारा संसार लोभी हो गया है, लोभी धार्मिक नहीं हो सकता, लोभी पुनीत नहीं हो सकता, लोभी पापी हो सकता है, पुनीत नहीं हो सकता, दानी पुनीत हो सकता है, लोभी पुनीत नहीं हो सकता। लोभी ते पापी है, दानी पुनीत है, लोभी पापी है। तो पाप व्यापक हो गया, पाप छा गया, पाप ग्रासी पृथ्वी, धौल खड़ा धर हेठ पुकारा। जब पापियां नाल धरती भर जाती है, भाव लोभियां नाल भर जाती है, तो एक दफा ते जमीन दे जर्रे भी पुकार उठते ने, हे प्रभु रहमत कर, बख्शिश कर, पापी ही पापी, पापी ही पापी। सब कुछ बेचण लई तैयार ने और सब कुछ खरीदण दे खरीदार भी मौजूद ने। बाजार बन गया है सारा संसार, बाजार बन गए मंदिर, बाजार बन गए धर्मस्थल, बाजार बन गए तीर्थ। सनातन मत दा सिरमौर तीर्थ बनारस शिवा ने वसाई सी, एक महान योगी ने, एक महान तपीश्वर ने। तपीश्वर पैदा होवन, संत पैदा होवन, जोगी पैदा होवन, ध्यानी पैदा होवन, ज्ञानी पैदा होवन, ये नगरी वसाई। पर इस नगरी रिच लोभी आ गए, लोभी जिथे कठे हो जान, लोभी लंपट आंदा है, ठग आंदा है। लोभी दे अंदर अनेकां लहरां चलदियां ने लैण दियां, लिहाजा लोभी हर पासे लंपट पड़ा
फैलांदा है तदी ते मेरे पादशाह ने कहे हे उभा लंपट संग सिर मोरे अनकलेरी कलोलते। लोभी स्वयं भ्रष्ट होंदा है, सब कुछ नु भ्रष्ट करके रख देंदा है। लोभी तीर्थां नु मंदिरां नु बाजार बना के रख देंदा है और बाजार विच ते ठगी चलदी है। बाजार ते ठगी दा चोली दामन दा जो है साथ है। ये लोभ इस दे कारण करके जीव पता नहीं कितनी थावां ते भरमदा है, भटकदा है और उसका मन डोलदा है और हर जगह नू भ्रष्ट करदा है। हर वक्त लैण दी बिरती, लैण दी बिरती, लैण दी बिरती। लोभी दे नाल हर वक्त बाजार चलदा है, बाजार विच मनुख कुछ लैण लई जांदा है। लेकिन लोभी नू ऐसा बाजार चाहिदा है, लेना ते सब कुछ है और सब दे कोलो लेना है, बदले विच देना कुछ भी नहीं, ऐसा बाजार चाहिदा है। इस तरह दा बाजार लोभी हर वक्त अपनी कल्पना दी दुनिया विच बनाई रखता है। लिहाजा लोभी दे नाल ही बाजार जांदा है। लोभी जिथे बैठा है उत्थे ही बाजार है, चाहे वह हरि मंदिर बैठा है, चाहे गुरुद्वारे बैठा है, चाहे खाने काबा विच बैठा है, चाहे चर्च दे विच बैठा है। लोभी तां बाजार विच बैठा है, वो किधरे मंदिर विच नहीं बैठा, वो किधरे गुरुद्वारे नहीं बैठा, किधरे चर्च ते मस्जिद विच नहीं बैठा। लोभी जिथे भी बैठा है बाजार विच बैठा है। लोभी जिधर चलदा है बाजार नाल चलदा है, लोभी जिधर चलदा है ठगियां उस दे नाल ही जो है चलदियां ने। फिर सतगुरु देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच इन फरमान करदे ने,

है लोभ, हे लोभ, तैनू मित्र दी भी शर्म नहीं, तू मित्र नाल भी ठगी करदा है, तेनू इष्ट तो भी संकोच नहीं, तू इष्ट नाल भी ठगी करदा है, तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तू उन्हां नाल भी ठगिया करदा है, उन्हां नू भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनू मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उन्हां नाल भी ठगी करदा है, तू ते उन्हां नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना कीजे जे का पार वसाए, लोभी ते भरोसा औखा है, और अज दे युग विच चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नूं बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नूं मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दित्ती है।

0: भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, करंग देच मुंह मारना, हड्डी देच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, ये लोभी दी मनोबिरति है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है।
1: इक स्वान दोए स्वानी नाल भल

अजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्व देव मानुख पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणा का सागर है, मनुख औगुणा का सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जाते, मनुख दे औगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे। उंज ते अनंत औगण ने अनंत औगण ने, पर मूल कमजोरियां मूल औगण मनुख दे पंज ने जिन्हां नूं इस तरह गणित दे च लियाया जांदा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां औगुणां नूं गुणां विच बदलना है। सतगुर मोह तो आरंभ करदे ने, मोह मेरा मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नूं कहिंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उस नूं थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा आज हो जाए, कल मिटदा आज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है। लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पै है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है। लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसे टूटने का दुख है, इसे टूटने का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छूटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना होई तो जिसनों पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह बच जाता है, और जितना मोह बच जाता है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा है। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आंदा है मेरा है, मेरा है, मेरा है, उतना ही मोह बच जाता है, उतनी ही पकड़ बच जाती है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोहग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस दे उत्ते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है, जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है। बस इत्थों ही दुख है, इत्थों बेचैनी, इत्थों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन पांच छह वरिया का गुम हो गया, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभदियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पियां वगंदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा दे बतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस च मोह सी, बिछड़ गया। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
धीमा पैदा गया। क्यों? कहते हैं समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंग गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर ते दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखे। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसते गल दे च है, आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हास्यां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघदे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मां नु बच्चा मिल गया, प्यो नु पुत्र मिल गया, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दित्ती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आयो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेख्या वो होर है। इस बच्चे ने उसी बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानु दिखाइए। जद जाके मां ने वेख्या, प्यो ने वेख्या, हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर लिया है। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोह दी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पई। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया। जैसे बूटे नु पानी ना दियो कुमलान लग पैंदा है, मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलान लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लित होण लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया, सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौ गया, हमेशा दी नींद सौ गया।
اس بچے نو مردہ ویکھ کے نہ ماں دی اکھاں چ ہنجو نہ پتا دے منہ چ ہوکے بس سسکار کرائے, کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی سنتاپ نہیں. کیوں؟ اس نال مو نہیں. مو کیوں نہیں؟ میرا نہیں, میرے نال مو ہوندا ہے. جو میرا نہیں اس نال کادا مو. لیکن داس سسکار کر کے گھر واپس ہی آئے نے, ایک سجن نے آ کے دسیا, مترو جس کا داس سسکار کر کے آئے ہو وہی تھوڑا بچہ سی, جس نو لے کے آئے ہو یہ نہیں ہے تھوڑا. ثبوت مہیا کر دیتے. تہائیاں مار کے رو اٹھی ماں, چیخاں نکل گئیاں پتا دیاں, سارا گھر غماں دا ساگر بن گیا, مرگڑ گھاٹ بن گیا. ہن جس گھر دے چ خوشیاں دے پھل کھڑے ہوئے سن, ہن دکھاں دے کنڈیاں تو علاوہ ہور کچھ بھی نہیں. ہن جتھے خوشی دی روشنی سی, ہن دکھاں دے ہنیریاں تو علاوہ ہور کچھ بھی نہیں. ماں اپنے کیس پٹ دی ہے, پتا اپنا سر دیوار نال ماردا ہے. سڈے بگیچے دا پھل مرجھا گیا, اتے میرا سی مرجھا گیا, اتے میرا سی ٹوٹ گیا, اتے میرا سی جاندا رہا. تو دکھ میرے دا ہے, ورنہ لڑکا تک سامنے کھڑا ہے یہ میرا نہیں. اس نال مو بھی ٹوٹ گیا. اس ادارن نال سپشٹ ہو گیا, جو میرا ہے اس وچ مو ہے, اور جس وچ مو ہے چھوٹی جی خراش بھی برداشت نہیں ہوئے گی. پر جس وچ مو نہیں, جو میرا نہیں, ریزا ریزا ہو جائے ٹوٹ کے, تاں بھی کوئی دکھ نہیں, تاں بھی کوئی سنتاپ نہیں. سنتاپ, مو, دکھ یہ سارے اتھے کٹھے ہو جاندے نے جتھے میرے بھی مور لگدی ہے. میرا گھر, میری کل, میری عزت, میری مان مریادا, میری دھن سمپدا. تو جو میرا نہیں اس نال مو نہیں. دراصل منک نے میرے بھی مور متھیا تے لائی ہے. اے میرے دی مور سچ تے نہیں لا سکیا. واقعی جس نو کہہ سکدا ہے کہ پربھو میرا ہے, یہ پرماتما میرا ہے, اور وہ میرا ایسا ہے کہ ساری کائنات بھی اس نو آکھے میرا ہے, میرا ہے, تاں وی وہ بددا نہیں, گھٹدا نہیں. سب دے حصے یکساں آندا ہے, اکو جی آندا ہے. لیکن مو ایک ایسا پردہ, میرا ایک ایسا اگیان, جس کارن کر کے یہ متھیا نو تے گل نال لاندا ہے, سچ تو کوسوں دور بھجدا ہے. اور اس طرح زندگی مو دے دلدل وچ پھس کے رہ جاندی ہے, مو دے خو دے وچ ڈب کے رہ جاندی ہے. اور اے میرے دا وستار صرف منکھاں تک ہی نہیں کہ میرا بھرا, میری ماں, میرا پتا, میری پتنی, میرے بچے, اگاں چل کے اے مو سمپتا تے ہو جاندا ہے, دھن تے ہو جاندا ہے. موجودہ دور دے کچھ منکھاں تے وشواس گھٹدا جا رہا ہے. منکھ دی منک نال پکڑ کٹتی جا رہی ہے, منک سیاح ہوں جا رہا ہے, چنچل ہوں جا رہا ہے, بودھک ہوں جا رہا ہے. اور جتنا بودھک ہوں جا رہا ہے
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਨਣ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

दीवार देखो, दूरियां देखो, तो बहुगिणती विच कारण धन होगा। धन दी पकड़ ज्यादा, धन नाल मोह ज्यादा, और इतना ज्यादा इस देश देखते हैं धन दी पूजा होती है। सब तो वड्डा त्योहार दिवाली, ते दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन, धन दी पूजा। कोई इस ढंग नाल अपने मां दी पूजा नहीं करता, पिता दी पूजा नहीं करता, पुत्रा दी पूजा नहीं करता, पत्नी दी पूजा नहीं करता, पति दी पूजा नहीं करती पत्नी। लेकिन सारे मिलके धन दी पूजा, तो अचेतन मन देच धन दी पकड़ बहुत ज्यादा हो गई। और मूल कारण धन जैसा वर्ती है धन ना नहीं करता, धन जिथे रखिए, और जो इसका इस्तेमाल करिए धन कोई हील हुज्जत नहीं करता। तो इस सदी रेचते ये पगड़ शिखर पाते हैं, बड़ी प्रबल है। इस तो थले है परिवार दी पकड़, कुल दी पकड़, मान मर्यादा दी पकड़, और फिर अपने तन दी पकड़, अपने रूप दी पकड़, अपने जोबन दी पकड़। मोह दा एक बहुत वड्डा विस्तार है, और ऐसा जापदा है जैसे मोह नू नापना औखा है, इस वास्ते मनुख दे दुखां नू भी नापना बड़ा औखा है। तदी ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे मोह तू बहुत बलवान है, हे मोह तू बहुत शक्तिशाली है, तू अपनी जाल सारिया ते पाई हुई है, तू सारिया नू अपनी जाल दे फसा के रखे हुआ है। मोह नू घूमण घेड़ी भी कहते हैं। सियाने लोग जानते ने, खास करके दरियावां दे कंडे ते रहण वाले, जिथे पानी घूम रहा होवे लाजमी उत्थे खड्डा हुंदा है, चारों पासे दा पानी उसनू भरन लई दौड़दा है, और जैसे उस खड्डे नू पानी भरन लई दौड़दा है पानी दा घेरा बन जांदा है, वो घूमण लग पैंदा है। उसे नू कहिंदे ने घूमण घेरी। सियाने तैराक भी जानते ने, अगर कोई उस घूमण घेरी च फस गया है निकल नहीं सकता। हां उदों निकलता है जब शरीर दे चों प्राण निकल जाते हैं। जीव का मनुख जितना संघर्ष करता है निकलण का, उतने ही उस घेरी च फसता है, उतना ही डुबदा है, उतने ही गोते खांदा है, और जितना संघर्ष करता है उतने ही प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब सारे निकल जाते हैं प्राण, तो यह भी घूमण घेरी चो निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमण घेरी है। एक दफा जन्म दे लेके जद मनुख फसदा है, तो मरण तो बाद ही उस घूमण घेरी चों निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमण घेरी चो निकले है फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी। इस तरह अनंत जन्म घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है फिर घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है फिर घूमण घेरी च फसदा है, और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आखे है, मोह घूमण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख है, मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जाता है, इसी ची मनुख तड़प के रह जाता है, और निकलना जीवन

अत बलना बहुमर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुक चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां दा ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पए, तां वी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए। फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ। ਡੁਲ ਡੁਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा, मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत होवे, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरा खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे जा आगरे शहर दे लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनू भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे है और कह रहे है, जा लब के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदिया वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है इसकी गोद विच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चादर एक पासे की थी, चीथड़िया दे च लिपटिया होया एक करूप और मैला बच्चा खादमा दी गोद विच है। हैरान होके अकबर कहिंदा है, ए बच्चा ये किसदा बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनु ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इस दे सामने पिक कर है। कहिंदे ने नौकराणी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया मैं मोह दी नजर नाल सलीम नू वेख रहे हैं, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नू वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकराणी नू अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चा गई, पकड़ दे चा गई। और ए असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनू चंगे नहीं लगदे। अपना करोड़ बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी दा सुंदर बच्चा भी क्रूप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई
कोई मनुख प्रभु दी शरण प्रकट प्रभु दा चिंतन करे नाम दे गीत गांदिया गांदिया मऊ दे पर्दे नू परे सुटदा है निर्मोह हो जांदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मऊ ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चो भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी सारे का सारा पराया इतना वड्डा जगत ते वो परा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय दे च जीवेगा डर दे च जीवेगा दुख दे च जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख दे च ते भय दे च जीवदा है सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी उसकी सोचनी छोटी उसकी समझ छोटी उसका सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साढ़े देश दे एक ऐसा भी पुरुष होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखे सी निर्मोह और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासक वार्ता है एक ऋषि ने जद ए ना सुने राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया है राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रसिया है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आखिया जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़िया थानू ए खबर सुनाने वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख की पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मोह तो उच्ची हो गई सी ऋषि नु कहन लगी पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ देश देश जाए पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ दे दिस जाए संसार एक वृक्ष की तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
और संस्कारा पे प्रालब्ध वश होके संजोग वश होके इना परिवारां दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, क्योंकि रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गए, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखी है गया है। राजसभा विच ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी, राजे ने सम्मान दिता, बिठाया, आन दा कारण पुछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा है, दसोरा राज ऋषि संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है, राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी।

थले पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोल है। शेर ने हमला करके उसनु जख्मी कीता है, मार दिता है, उदी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थोड़े कोल आया, थानू दसन लई आया। राजा निर्मल प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा विच हसदिया होया कहिंदा है, तपिया तप क्यों छाड़ियो,

असीते काफी समय तो समझी बैठे हैं सरां है, एक आउंदा है एक जाउंदा है, एक फूल खिड़दा है एक मुरझा रहा है, एक फल फूल चो निकल रहा है एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है एक टूट रहा है। इत एक प्रभु दी लीला समुची सरां देच ये आवागम बने होया है और इत्थे सारे मुसाफर ने, असी भी मुसाफर हैं, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गलती नहीं, पर मैनू दुख है अफसोस है, ऐ ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया, इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरख नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी। जितने सौखे ढंग नाल एक गल राजे निर्मव दी बयान की जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन, उतना ही कठिन, उतना ही कठिन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लखते जिगर्ष अजीत सिंह जुजार सिंह कोल बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है, सतगुरु अजीत सिंह नू तैयार कर दें, होर सिखा नू नहीं कहंदे किधरे इतिहास ए इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले, नहीं अजीत सिंह नू तैयार कीता है। और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है, ऐ मेरे बच्चे एक ख्वाहिश है मेरी तू पूरी कर, अजीत सिंह हथ जोड़ के कहंदा है गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, नहीं तू ही पूरी कर सकता है, हुक्म गुरुदेव पिता ताबेदार। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं पूरी गल सुन, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहंदा है नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा, स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया, दोवें लखते जिगरां नू देखते ने शुक्र करते ने परमात्मा का ईश्वर का अकाल पुरख का असीम प्रेम की दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ना ताज का मो ना तहत का मो ना परिवार का मो ना संसार का मो, केवल प्रेम अकाल पुरख का
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करदा है अरदास करदा है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जांदा है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया है ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

तू है। इस बिरती ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तू है, इसने भगवान दा रूप बना दिता। मैं हां, ये शैतान दा रूप बना देंदा है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान दा रूप है जिसते रोम रोम देच, जिस दिया सारिया क्रियावां देच भगवत दी प्रदर्शित, भगवत दी नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तो ना ही, अब तो ही मैं ना ही, जद मैं सी तो नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, ये तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू आश्रित है, तू ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने, बस तू ही। एक आलम दा कहना है, अज रहा चुनार कि सलामत न कुनत, इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न खुआनद ओ इमामद न कुनद, जे किधरे इबादत करनु तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं, ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दिया मस्जिद दे भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे च भी जो है था ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठन दी कोशिश करता है। अहंकारिया दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित ते है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ने, गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहुंदा है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जांदा है, अहंकारी शर्मसार होके रह जांदा है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नूं तोड़न वास्ते है।

पर अहंकार बड़ा चलाक है। ये धार्मिक साधना नो भी अपना सिंहासन बना देंदा है, बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जांदा है।

ते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाण दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने, जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना। हां कहना ही भुल गया, हां कहण विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रंग तजंत सतरंग दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसके दुश्मन ही वधदे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारारद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारारद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितों खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे, सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लेंदा है। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नु उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नु, जड़ चेतन सब नु अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नु मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी ढंग दसती है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जद उस एक नू सज्जन बना लेंदा है, ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है, तो सारी अनेकता
ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੁਗਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਜੇ ਅਸਥੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਖਸਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਰਾਗੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਇਹ ਯੋਗੀ ਇਹ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਜਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੋਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਗਾਲਬਨ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਆਸ
ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हर्क सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला जैसे दोवे कस्बे दे अंदर दाखल होंदे ने सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते दुखी हो गया है बैरागी साधु है कल तक मैं जब इस कस्बे दे आउंदा सी सारियां दी निगाह मेरे ते आज ये निगाह फिर गईया ने आज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है हैं इते मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है सारे इसनों पे वेख देने खैश जिस घर दे जाना सी गए आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछे उस बैरागी साधु तो ए जो नाल आए ने ए कौन ने क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने सोना चोला पहने आया है मुखड़े ते शांति झलक दी है निर्माणता बिखर दी है रहस बिस्माद अखां दे विच है तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने दुखत होके कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन मेरे बचपन दे दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने तपीश्वर ने पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा लेकिन अहंकार उबल पिया बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है खैर जद उस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे कोई इस तरह तारुफ कराई दे खैर माफी मंगण लग पया कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ दूसरे घर गए दूसरे घर वालियां दी भी निगाह इस साधु ते अखां विच रमज है बिस्मात है चेहरे ते शांति है और सब तो वड्डी गल जिस तो एक घर वाले प्रभावित हो रहे ने इतना कीमती चोला इतना सुंदर चोला तो दूसरे घर वालिया ने भी यही पूछे संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने ये कौन ने तो एकदम बोल पे मेरे बचपन के दोस्त ने बाल सखा ने और साधु ने तपस्या कर देने ज्ञानी ने रह गई इस चोले की गल ये चोला मेरा नहीं है मेरा नहीं है इस दे विच ही वो कह गया है मेरा है मेरा है मेरा खैर उस घर तो ज्यों निकले ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी पर निकल गई है गल तू सहन कर ले बर्दाश्त कर ले हुण मैं नहीं कहांगा तीसरे घर गए आओ भगत होई बिठाए गए पर वो चोला
तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे हैं। सवावक पूछ लिया संत जी ए नाल कौन आए ने ए केड़े संत ने तो हुण तारुफ करांदा है मेरे बाल सखा मित्र ने जपीश्वर ने तपीश्वर ने ज्ञानी पुरुष ने पर रह गई इना कपड़िया दी गल इस चोले दी मैं इस दी गल नहीं करनी ना गल करके भी कर गया। जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए कुटिया च पहुंचे इस मेहमान साधु ने इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है एले अपना चोला हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना तीन दफा तू उतरवाया तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र दा भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु दी महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र नु छुपाएगा मां बाप गुणवान ने ते उन्हां नु पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है उसनु भी हंकारी छुपाण दी कोशिश करेगा पिछे सुटेगा। महाराज दी बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी। ये बड़े बुरे पुरुष होंदे ने हंकारी गुरु नु भी छुपांदे ने क्यों फिर मेरी मैं मेरा वडपना फिर किथे। तो ये मित्र नु छुपांदे ने पुत्र नु छुपांदे ने अगर गुणवान है मां बाप नु पिछे सुटदे ने सिर्फ अपने आप नु ही अग्गे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है रब नु भी पिछे सुटिए परमात्मा नु भी पिछे सुटिए। और नाकश ने पिछे सुटन दी कोशिश की थी सी नमरूद ने कह दिता सी कौन होंदा है खुदा मैं खुद खुदा। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नु भी नहीं मन सकदा। अहंकार जीवदा है मैं आश्रित तू ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है बकरे दे बोल नु अग्गे करके ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं। इसे नु आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी है फखर

उस आंत बेचो सोटे दी जरब नाल निकल रहे है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही कोई इतनी कुर्बानी करे साधना करे ते साधना विच लीन मनुखा दी कदमा नु खाक दे अपने मस्तक नु रगड़े श्वास श्वास वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ताई ये मैं तुम देच बदल दिए जीवन धन धन हो जांदा है महान हो जांदा है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा। अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उते प्रसन्न होंदा है अपनी उपमा सुन के उपमा होण लग पई है दूजियां दी तीसरे दी मित्र दी तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा दा मतलब की है गल नूं छुटियाना और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करदा है जो किसे गल देच उस नालों अग्गे होवे गुण देच कला देच ज्ञान देच शील संजम देच या फिर प्रभु दी बंदगी देच या संसारी तल ते ले लो सता देच धन देच स्वप्न देच किसे भी पख तो जो अग्गे है अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नो सच नहीं कहेगा। अहंकारी निंदा करेगा और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है। छुटियाण की कोशिश करता है घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हां दी तपस्या इतनी इतनी परमात्मा उन्हां दे सन्मुख होया है प्रभु सामने होया है लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है। मारिया कढ़िया ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले थे मूर्ति दे सन्मुख सी मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है अहंकारियां निंदकां पिठ दे नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिठ होंदी है। जो गुणा दी सिफतों सलाह करदा है वो ते परमात्मा दी सिफतों सलाह करदा है। गुण किसे मनुख देच भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है पर वो ते निंदा करदा है गुणा दी निंदा करदा है क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा दी पिठ हो जांदी उसकी तरफ। और जिस मनुख दी तरफ परमात्मा दी पिठ हो गई है सब दी पिठ हो जाती है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करदे ने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे ऐ अहंकार तेरे करके ए जीव जम देने मर देने आम देने जान देने दुख भोग देने सुख भोग देने थक जान देने टूट जान देने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हुए, भ्रमण कर रहा हुए, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हुए। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति देच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हुण जे किधरे अंदरों निकले तू इते औषधि हो गई। मैं इते रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने। इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है। जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाट्यो। सतगुरु की बाणी का फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे च है, मनुख समय दे बंधन दे च है, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे है। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और इस सब कुछ मनुख काल दे जाल दे च फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे च है। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बने, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आउंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आउंदा। रात अपनी जाल लेके आउंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दियां जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मोड़े कवन गुने। ए मूर्ख किमें छुटेंगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पिया जैसे फाई दे फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल दे फरिया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नू तड़प रहा है, रात नू तड़प रहा है, जो कुछ कर रहा है बंधन ही बंधन, जो कुछ कर रहा है मजबूरी ही मजबूरी। समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत दा धार्मिक अध्ययन करता, धर्म दी गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नू एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा दी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं।
संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है, काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है, उसे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वानों ने समय दिया तीन धारावां मनियां ने, समय नो तीन हिस्सों विच वंडिया है, भूत, भविष्य, वर्तमान, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दिया इन्हां ही तीन धारावां विच। जद मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा, तो किथे चला गया? चला गया भूतकाल विच, चला गया भविष्य विच। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड विच, एक शब्द होया सी, फिर धुंद बनी, पानी बनिया, ठोस जीवन बनिया, वनस्पति, पशु, पक्षी, सहजे सहजे ये विकास चलता रहा। अनंत काल तो बाद ये जीवन मिलिया, जिसनु मनुख कहिंदे आ, तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। क्योंकि असी कदों तो हाँ ये नाप ही नहीं सकते। बल्कि भाई साहब भाई नंद लाल ते ऐसा कहिंदे ने, नबूद हेच निशान हांजे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो अवर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, नहीं सी। हे गुरु, हे प्रभु, मैं ते उदों दा यात्रा दे छा, पड़ाव ते बड़े आए, मंजिल नसीब नहीं हुई। रस्ते च वक्ती विश्राम करन लई थावां ते आईयां, सदीवी सुख, सदीवी विश्राम, ओह ते मंजिल ते लभना सी, मंजिल ते मिली नहीं। तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भविष्य नूं बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दियां इच्छावां, मनुख दियां वासनावां, मनुख दियां कामनावां नूं नापिए, तौलिए, इन्हां कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनियां ख्वाहिशां, ये इस छोटी जिही जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावां सीमित नहीं ने, वासनावां सीमित नहीं ने, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नूं समा चाहिदा है, अस्थान चाहिदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनूं कहिंदे ने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान में किस तरह नापी है। असीम है
भूतकाल, असीम है भविष्य, और मनुख इन्हां दोहां विच जीवंदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघे उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां। जो समा आण वाला है उदी चिंता मैनू जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रहियां ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है, इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नु योगी कहंदे आ, उसे नु असी संत कहंदे आ, उसे नु असी भगत कहंदे आ, उसे नु ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी ना पिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नु नापदे ने, वर्तमान किन्ना क है। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सैकंड एक दम, इह एक दम जो मोह दे च है नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, मिलने ने कि नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंग गए, उते वर्त ले, उते खर्च हो गए। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, नकद ते है वही दम जो मुंह दे च है। यकदम बहेशरा न बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना कीती, एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगा चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। एक दम जो नकद से इन्हों में खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद दिच, खर्च होए दमा दी याद दिच। एकदम जो मेरे मुंह दिच सी वर्तमान नकद, इन्हों में बतीत कीता आन वाले दमा दी चिंता च। तो इस तरह यादां भूतकाल दिया, चिंतावां भविष्य दिया, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं, वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरुषां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सेकंड। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। टुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदा है, उस दम दे ची अपने आप नु रोक लवे। वो एक दम जो नकद है उस दे विच ही मनुख बैठ जाए,
حاضر حضور خدا ہے. اسے میں مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے، آج ملاوا شیخ فرید تاکم گونجنیاں منو مچندنیاں، جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں، جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں، جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں، ہنے ہی خدا تے پرگٹ، پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا، بڑی تپسیا. ورتمان وچ ہی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے، ورتمان وچ ہی پربھو دی جھلک ملدی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی، انہاں دا فرمان ورتمان وچ ورتدا ہوونہار سوئی پروانا. گرمکھ تے ورتمان وچ جیوندا ہے ایک چھن وچ، اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان، اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے. سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچھا اٹھ گیا، یہ سنسار تو اچھا اٹھ گیا، کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے، ہاسے نے رونے نے، جنم ہے مرن ہے، نفع ہے نقصان ہے. سنسار وچ عزت ہے بےزتی ہے، تندرستی ہے بیماریاں نے، سوپن ہے کروپتا ہے. اچھا اٹھ گیا ایک دم وچ، جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا، دو مٹ گئے، دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا، ایک پرگٹ ہو گیا نرنکار پرگٹ ہو گیا. تو ایک دم وچ ہی پرگٹ ہو گئے گا. بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد وچ پرماتما کتھے، انہاں دماں دی یاد وچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے. بیٹھا ہوندا ہے منکھ یاداں وچ، کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں، کدی ملاپ دیاں یاداں کدی وچھوڑے دیاں یاداں، کدی سنتاپ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں. اس وچ جی رہا ہوندا ہے، یا پھر بھوش دی چنتاواں دے جی رہا ہوندا ہے، یہ ملنا بھی ہے کہ نہیں، کامیاب بھی ہوواں گا کہ نہیں، نفع ہوے گا کہ نہیں. بھوش دی چنتا اس طرح دبدا وچ ڈبوئی رکھدی ہے. بھوش دی چنتا وچ منک دفاڑ ہویا بنیا رہندا ہے. ایک دم دے بھوش مٹ جاندا ہے، ایک دم دے بھوت کال مٹ جاندا ہے، ایک دم دے ایک پرگٹ ہو جاندا ہے. وہ ایک آنند سروپ، وہ ایک آنند مئی. اس واسطے گروانی نے بھوش نو جال کہہ دیتا ہے، بھوت کال نو جال کہہ دیتا ہے. اور بھوت کال تے بھوش، ایک گزرے ہوئے دن، آن والے دن، اور دن دن کر کے دن بھوت کال بندے جا رہے ہیں، دن بھوش دیاں چنتاواں دا روپ دھارن کردے جا رہے ہیں. تو سمے نو ناپن دا ڈھنگ دن تے رات ایک جال بن کے منکھ نو فسا رہے نے. جالی رین جال دن ہوا، جیتی گھڑی پھائی تیتی، رس رس چوب چگے نت پھاسے، چھوٹ سموڑے کون گنے. دستے سہی کیوں چھٹے گا اس جال تو،
तो सतगुरु की बाणी डंग भी दसती है, काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा फाट्यो। सच ते वर्तमान है, सच ते एक क्षण दे च है, सच ते एक सैकंड दे च है, और ओही एक सैकंड ओही एक क्षण ओही एक दम सच है। लंग गए दम झूठ ने, आन वाले दम झूठ ने। एक छोटी जी गाथा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी मौज दे च बैठे ते मरदाने नू कहिंदे ने, मरदाने आ तेनू अपने जीवन का किन्ना क भरोसा है, कितना तक तू जीवन की लालसा रखदा है, उम्मीद रखदा है, भरोसा रखदा है। सतगुरु की संगत काल मिटिया ते नहीं मरदाने की दुनिया च, अजे काल छोटा जरूर हो गया, समा मिटिया ते नहीं समा छोटा हो गया। कहिंदा है पातशाह, सौ कदम तक चला अगे दा मैनू कोई भरोसा नहीं, अगला कदम मैं उठ सकांगा कि नहीं। तो कम से कम 200-300 दमां दा थे मरदाने नू भरोसा है, इतने दम तो मैं ले सकदा। बाले नू पुछदे ने, बालिया तू दस। तो बाला कहिंदा है पातशाह, मरदाने नू 100 कदमां दा भरोसा होवेगा, मैं तो एको ही कदम दे भरोसे जी रहा, एक कदम जो पुटे है पता नहीं दूसरा कदम उठ सकांगे कि नहीं। तो 3-4 दमां दा भरोसा, समा बहुत सीमित हो गया, समा बहुत छोटा हो गया, काल बहुत छोटा हो गया, 3-4 दम। दोवे हाथ जोड़ के पूछते ने धन गुरु नानक देव जी नो, पातशाह थानू किन्ना क भरोसा है, थोड़े भरोसे नाल साडा बोध वधे, साडा ज्ञान वधे, थानू किन्ना क भरोसा है दसो। साहिब कहिंदे ने हम आदमी हां इकदमी मोहलत मौत न जाना, एकदम जो मुंह दे च है बस इसे ते यकीन है, इन्ना क भरोसा है एकदम दा, बाकी दा कोई भरोसा नहीं, बाकी दी कोई उम्मीद नहीं। और जिथे सुरत एकदम दिस डिग गई उथे एक प्रगट हो गया, जिथे मन एकदम दिस डिग गया मन मिट गया, विचार खो गए, उथे एक नु प्रगट होण लई स्थान मिल गया, जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे, भूतकाल दियां यादां असीम आवन, सच नू प्रगट होण लई थां नहीं मिलदी, सच ते वर्तमान विच प्रगट होंदा है। और जैसे सच प्रगट होंदा है सुरत एकदम विच टिकदी है।

इस काल विच जी रहे ने ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक, विष्णु जैसा महान सतोगुणी, शिवजी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर, पर काल विच जी रहे ने, समय विच जी रहे ने। अजे समा मिटिया नहीं, अजे काल मिटिया नहीं, अजे काल मौजूद है, काल विच जीविया जा रहे। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखिया अकाल। वो मूर्ति मान है, पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है, अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं, माजी दियां यादां विच नहीं। इसनूं मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां, जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नूं मिला ते अजे ही मिला। इसनूं मैं उर्दू रूप भी दिता है, कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान, और जो हाल विच नहीं जी रहा उन्हू कहने ने ते बेहाल है। इते वर्तमान विच नहीं, इते एकदम विच नहीं, इते बेहाल है। इते भविष्य दी चिंतावां दे जी रहा, मुस्तकबिल दी फिक्र दे जी रहा, इते भूतकाल दियां यादां दे जी रहा, इते माजी दियां यादां दे जी रहा। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰਿਸ਼ਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਬੇਹਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਈਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੋ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ। सपना है जिन्नी देर तक चल रहा है, पर नहीं है अचेत अवस्था दे सपन, जागृत अवस्था दे मिट गया है। नहीं है, नहीं है, है सपन है। सपन दे मनुख कतल करे, शरीर ते मन ते ओही प्रभाव पैंदा है जो जागृत अवस्था विच मनुख करे। स्वप्न विच दुराचार करे, शरीर दी ओही हालत बनदी है, मन दी ओही हालत बनदी है जो जागृत विच। स्वप्न विच चोट लग जाए, जरब लग जाए, शरीर दी हालत मन दी हालत ओही बनदी है जो जागृत अवस्था विच। पर स्वप्न विच मिलाप होया, कोई मिलया, उतनी ही खुशी आउंदी है। कोई मन चाहा मित्र मिलया, कोई मन चाही वस्तु मिली है, स्वप्न विच मिली है, मन प्रभावित होया, तन प्रभावित होया। स्वपन इस बारे असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, है, पर जितनी देर विच कहने है नहीं हो जाता है, और जद कहने नहीं है, है हो जाता है। जागृत अवस्था विच जो संसार है वो निंद्रा अवस्था विच नहीं हो जाता है, स्वपन अवस्था विच नहीं हो जाता है, और स्वप्न अवस्था दे जो संसार है वो जागृत अवस्था दे नहीं हो जाता है। जागृत अवस्था का जो साडा संसार है वो स्वप्न अवस्था दे विलीन हो जाता है, और जो स्वप्न अवस्था दे संसार है वो जागृत दे खत्म हो जाता है। तो हुण किसनू सत कहिए ते किसनू मित कहिए,

کس نو کہیے ہے تے کس نو کہیے نہیں ہے. تو دھارمک ودوان کہندے نے دونوں روپ دینے پینے نے, ہے شاید نہیں ہے, نہیں ہے شاید ہے, ہے سوپن جتنی دیر لئی چل رہا ہے, مٹ گیا سوپن, سپنے دا سنسار مٹ گیا, ہے جاگرت اور جاگرت دا سنسار, پر جیسے جاگرت اوستھا ختم ہوئی, نندرا اوستھا شروع ہوئی, سوپن اوستھا شروع ہوئی, تو جاگرت اوستھا دا سنسار نہیں ہو گیا. اتے جیون بھر ایسا چلتا ہے, جو جاگرت اوستھا وچ ہے سوپن اوستھا وچ نہیں ہے, جو سوپن اوستھا وچ ہے وہ جاگرت اوستھا وچ نہیں ہے. بچھڑ جاندے ہیں اسی اس توں جس نال جاگرت اوستھا دے جڑے ہوئے ہوندے ہیں, اور بچھڑ جاندے ہیں اسی اس توں جس نال اسی سوپن اوستھا وچ جڑے ہوندے ہیں. جیون بھر ایسا چلتا ہے, روز بچھڑتے ہیں, روز ملتے ہیں, روز ملتے ہیں, روز بچھڑتے ہیں. اس طرح اسی جاگرت اوستھا وچ ایک سنسار وچ جیندے ہاں, سوپن اوستھا وچ دوسرے سنسار وچ جیندے ہاں. پر چونکہ جیندے ہاں تو ہے, ہے شاید نہیں ہے, نہیں ہے شاید ہے, اتنے تک تو ہے جتنے تک جاگرت چل رہی ہے, جتنے تک سوپن اوستھا چل رہی ہے. اسی واسطے تھے بیان کیتا ہے مہاپرشاں نے, شاید جگت سوپن ہے, جاگرت بھی سوپن ہے, سوپن بھی سوپن ہے, لیکن تھوڑے جہاں بھید نال اس نوں بیان کریے, جو رات دا سوپن ہے شاید وہ جاگرت اوستھا دی کلپنا ہے. جاگرت اوستھا دا جو سنسار ہے شاید سوپن اوستھا دا سپنا ہے. کلپنا جاگرت اوستھا دے جو چل دی ہے سپنا ہے, نندرا اوستھا دے جو سوپن چلتا ہے وہ کلپنا ہے. دوہاں نو کلپنا کہہ دئیے, دوہاں نو سوپن کہہ دئیے, گل ایک کوئی ہے. کلپنا ہے, سوپن ہے, پر اسی نہیں کہہ سکتے کہ سوپن نہیں ہے. شریر تے پربھاوت ہویا ہے, من تے پربھاوت ہویا ہے. رات نو کوئی دفینا مل گیا, دھن مل گیا, عہدہ مل گیا, متر مل گیا, پتر مل گیا, کوئی وچھڑیا ساتھی مل گیا, خوشی تے ہوئی ہے من نو, تن دے رونگٹے تے کھڑے ہوئے نے, پر کوئی متر عزیز اکارب چلانا کر گیا, نقصان ہو گیا, کسی دشمن نے گھاتک حملہ کر دیتا ہے, یا سوپن وچ منک نے دوراچار کیتا ہے, قتل کیتا ہے, من تے اتنا ہی پربھاوت ہو رہا ہے, تن تے اتنا ہی پربھاوت ہو رہا ہے. مہاپرشاں نے اس واسطے سنسار نو صرف مت نہیں آکھیا, متھیا نہیں کیا, ہے شاید نہیں ہے, نہیں ہے شاید ہے, کال ہے شاید نہیں ہے, نہیں ہے شاید ہے. کال دا پربھاؤ تے موجود ہے, سمے دا پربھاؤ تے موجود ہے,
उस प्रभाव हेत मनुख जी रहे है, किस तरह कह देवे कि नहीं है। जिस तरह जागृत अवस्था विच कदी असी सुखी आउंदे हां, कदी दुखी आउंदे हां, कदी हसते हां, कदी रोंदे हां, कदी कोई मिलदा है, कदी कोई विछड़दा है, कदी नफा है, कदी नुकसान है। स्वप्न अवस्था विच भी ऐसा हुंदा है, कुछ सुख भरे सुपने, कुछ दुख भरे सुपने। किसे सुपन विच असी बिस्मात भरी अवस्था विच आउंदे हां, किसे सुपने च असी रो रहे आउंदे हां, दुखी आउंदे हां। किसे सुपने विच कोई मिलिया हुंदा है, बड़े प्रसन्न बड़े प्रसन्न, पर किसे सुपने च कोई विछड़दा है, बड़े दुखी बड़े दुखी। जागृत अवस्था विच असी कदी पाठ कर रहे हुंदे हां, सुरत जुड़ जांदी है, रस बन जांदा है, ऐसा स्वप्न अवस्था विच भी आउंदा है, जुड़ जांदा है मन, रस बन जांदा है, आनंद बन जांदा है। जिस संसारिक रस स्वप्न विच माणिया जा सकता है, तो निरंकार दा आनंद भी स्वप्न विच माणिया जा सकता है। जे जागृत अवस्था विच पदार्थां दा रस माणिया जा सकता है, तो परमात्मा दा रस भी माणिया जा सकता है। शायद इस वास्ते ही धन गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान कीता है, सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे, भेज न सका खोए। ऐ सुपने विच आण वाले हो, तुसी चले गए, क्यों? सपना चला गया, स्वप्न चलदा है निंद्रा दे, जागृत विच कल्पना चलती है, निंद्रा विच स्वप्न चलता है। निंद्रा अवस्था खत्म हुई, स्वप्न खत्म हो गया। जागृत अवस्था शुरू हुई, कल्पनावां दा जगत शुरू होया। तो सतगुरु ते मंग करदे ने, आओ सुभागी नींदड़िए, मत सो देखा सोए, ऐ भागा भरी नींद आ, तू आ। शायद फिर सुपने च झलक मिले, शायद फिर सुपने च आनंद मिले, पर हां मिलाप भरिया सुपन, सुख भरा सुपन, इस तरह प्रतीत होंदा जिवें एक क्षण दे च बतीत हो गया। पर दुख भरा सुपन जिस विच असी कुरला रही हुई है, तड़प रही हुई है, लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है। जागृत अवस्था विच भी ऐसा हो जाता है, दुख विच काल लंबा हो जाता है, समा लंबा हो जाता है, सुख विच समा छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। बाबा फरीद कह रहे ने, फरीदा राती वडियां दुख दुख उठन उपास, बहुत लंबी हो गई है रात होके ने, तो होके दुख तो निकल देने, होके विछेड़े तो निकल देने, और दुख दे समा लंबा हो जाता है। सूफी संत बाबा फरीद फरमान कर रहे ने, विछोड़े दी रात हे प्रभु हे खुदा बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी हो गई, इतनी लंबी हो जाती है जितना महान दा विछोड़ा होवे उतना ही समा लंबा हो जाता है, जितना तुच्छ चीज दा विछोड़ा होवे दुख छोटा होंदा है, समा भी थोड़ा जिहा लंबा होंदा है, ज्यादा नहीं। पर मन महान है, रस है, आनंद है, उसका विछोड़ा हो गया है, समा बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कितना लंबा हो जाएगा,
तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, चार पहर चौ जोगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। दिन दे चार पैर चार युगां वर्गे हो गए, नहीं लंघदे, नहीं लंघदे। एक एक युग हजारां साल वर्गा, लखां साल वर्गा, नहीं लंघदे। इन्ना लंबा हो गया कल्पना नहीं, ये सच है। चार पहर चौ जुगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। आई ये रात पता नहीं कितने युगां वर्गी है, कह नहीं सकते। दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, नरक दुख है। ईसाई जगत नु इसकी व्याख्या करनी नहीं आई, उन्होंने कहा नरक हमेशा लई है, सदैव ही है। शायद इस वास्ते नीतीश जैसे विचारक ने कह देता कि मैं धार्मिक क्यों नहीं हाँ, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हाँ। कहिंदे जो मैं गुनाह कीते ने, जो मैं पाप कीते ने, और जिन्हां गुनाहां बारे मैं सोचिया सी, अगर मैं किसे अदालत नू दस दिया तो सख्त मजिस्ट्रेट भी मैनू 4 साल तो वध जेल दी सजा नहीं दे सकदा। लेकिन मैं खुदा नू मनिया नहीं, इसे गुनाह करके वो मैनू हमेशा लई नरक, हमेशा लई। और ऐसा नरक जिथे जंबूरां नाल मास नोचिया जांदा होवे, जिथे दलदल दे सुटिया जा रहा है, जिथे उबलदे तेल दे तलिया जा रहा है, जिथे जिंदा मनुख दी जबान कटी जा रही है, बंद बंद कटे जा रहे ने, नरक दा ए नक्शा। तो ए विचारक कहिंदा है फिर उस खुदा नू रहीम कहण दी, रहमान कहण दी, प्रसाद कहण दी, दयालु कहण दी, करुणाकर कहण दी लोड़ की है। ते बहुत सख्त है, ते बहुत जालम। दरअसल व्याख्या करनी ना आई, नरक दुख है, स्वर्ग सुख है। सुख दे समा छोटा हो जाता है, दुख दे समा लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। एक घड़ी दिनस मुख बहुत दिहाड़े, मन न रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दा विछोड़ा और उसका दुख, ये एक पल ते कई दिनों वर्गा है, नहीं लंघदा, नहीं लंघदा। दुख दे बहुत समा लंबा हो जाता है, काल बहुत लंबा हो जाता है। सुख दे काल छोटा हो जाता है, परम आनंद दे काल खत्म हो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है। एक सैकंड दे, एक क्षण दे, एक दम दे भूत खो गया, भविष्य खो गया, अकाल प्रगट हो गया, काल ते खत्म हो गया। लेकिन बहु गिनती मनुखी दुनिया दी काल दे जी रही है। मनुख दे कोल सिमरति है, इस सिमरति कदी अगे जांदी है, कदी पिछे जांदी है। जदे भूतकाल दी तरफ जांदी है तो भूतकाल दा चिंतन बन जांदी है, जद भविष्य दी तरफ जांदी है तो चिंता बन जांदी है। तो चिंतन चलदा है भूतकाल दा, चिंता चलदी है भविष्य दी। इह किस तरह मिटे? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, मैं जिथे तक देखदा मनुख चिंता विच जी रहा है, भविष्य बहुत लंबा हर एक ने बनाया है, बहुत लंबा, बहुत लंबा। चिंतत ही दी से सब को है, सारी चिंता विच दिखाई दे रहे, सारिया ने बड़ा लंबा भविष्य बना रखे और चिंता भविष्य दी। यही कारण है कि कदम कदम ते बाजारां च बैठे ज्योतिषी मिलणगे, उन्हां नूं भी पता है हर मनुख जी रहा है,
भविष्य की चिंता दे जरूर पूछेगा भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है, भूतकाल कैसा है, कुछ इस नुचेत है, गुजरिया हुआ कल कैसे सी, गुजरिया हुआ साल कैसे सी, गुजरे 50 साल कैसे सन, चेते ने आने वाला कल किस तरह होवेगा कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये तो ठीक है कि 50-60 साल तो कोई पिछे जाए, 5 साल की जद जिंदगी होवे उस तो पिछे मनुख दियां यादा नहीं जांदियां, भुल गया है। हां किसी किसी की सिमरती ये शक्ति ज्यादा होंदी है, इस जन्म की दीवार नु तोड़ के अगले जन्म च भी पहुंच जाती है, पिछोकड़ बहुत कुछ दिसदा है, बहुत कुछ दिसदा है, और भविष्य भी वो देख लेंदे ने और सही देखदे ने। मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, भावे अज हो जाए भावे कल होवे, परमात्मा होए बिना ये चिंता मिटनी नहीं, ये भविष्य मिटना नहीं। पर यादा मासी दिया भूतकाल दिया यही बोझ मनुख ढो रहे, इसी बोझ दे थले मनुख दबे होया है, यही भार चुकी फिरदा है। कहिंदे ने भाई साहब भाई नंद लाल अद्धी रात नू बैठे ने मुंह लंबे लंबे होके निकल रहे ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी चहल कदमी आप दे कन्ना विच होकियां दी आवाज पई, जिधरों होके आ रहे सन गए देखे आए थे नंद लाल, नंद लाल नू भी महसूस होया मेरे कोल कोई खड़ा है, गौर नाल देखिया ते सतगुरु कदमां ते डिग गए। पातशाह कहिंदे ने नंद लाल रात बड़ी स्याह है काली है, हां महाराज बड़ी काली है, सब कुछ काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज काला दिखाई दे रहा है, सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, 10 क्यों काला दिखाई दे रहा है, ये क्यों काला है। तो नंद लाल सोचदे च पै गए, हाथ जोड़ के कहने पादशाह मैं शायर हां कवि हां आप दा अदना सेवक हां सिख हां, मैं विज्ञानक नहीं, मैं की जाना आसमान काला क्यों है। पर सतगुरु कहने तू तस्लीम कीता है शायर है कवि है, तो कवि दी अपनी कल्पना दी प्रवाज भी होंदी है, शायर दे अपनी तखयल दी प्रवाज भी होंदी है, उडारी होंदी है। चल तू अपने तखयल दे आधार ते कल्पना दे आधार ते दस आसमान दा रंग काला क्यों है, रंगश कबूद कर दिले अज पुरुष और आर साख्त, अज बस के दूदे आहे मन अज आसमान गुजस्त। हे मेरे बादशाह मेरे तड़पे हिरदे चो जड़े होके निकले ने ओ जद आसमान तक पहुंचे ने उन्होंने ही साड़ के काला कीता है। पादशाह ने गलवकड़ी च लै लिया, इतने काल दे भार थले तो जी रहे हैं, अकाल पुरख रहमत करन बख्शिश करन, काल खत्म हो गए अकाल प्रकट हो गया, अकाल महा आनंद है, अकाल वर्तमान है, काल भूतकाल है, काल भविष्य है, और काल भविष्य की चिंता है, काल भूतकाल दियां यादां ने, पर अकाल ना भूतकाल दियां यादां ना भविष्य दियां चिंतावां
परम आनंद प्रकट हो गया, अकाल प्रकट हो गया। भगत कबीर कहते ने, दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरिया संसारा। ऐ पागल संसारे हो, वाकई जो भूतकाल दियां यादां च बैठा है उन्हों किस तरह सियाणा आख्या जा सकता है, जो भविष्य दियां चिंतावां दे डुबिया होया है उसनों किवें सियाणा आख्या जा सकता है। सियाणा ते ओ जो वर्तमान दे जी रहा है, अकाल दे जी रहा है, काल दे च नहीं। अकाल दे जीण वाला काल दियां सारियां फाइयां नूं तोड़ के रख देंदा है, काल दे जाल नूं तोड़ के रख देंदा है। तदी के सतगुरां दी बाणी फरमान कर दी है, काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा ठाटे हो। इसे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, अकाल है अजाल है, हे प्रभु तू अकाल है, तेरे उत्ते काल दा जाल नहीं है। और मिट जांदा है समाधि दे समा, खो जांदा है काल, समस्यावां ते भविष्यां ने, समस्यावां ते माजी दियां सन, तो यादां समस्या समस्यावां दी यादां कुछ भूतकाल नाल संबंधित है, कुछ भविष्य नाल संबंधित ने। मिट गईयां सारियां समस्यावां क्योंकि वर्तमान एक क्षण समाधि। या मनुख समस्या च जीवदा है या समाधि, समाधि अकाल है, समस्या भूत है, समस्या भविष्य है, समाधि अकाल है। अकाल दा चिंतन समाधि लीन कर दें, अकाल दी याद काल नु मिटा के रख देंदी है। अकाल दा चिंतन सच दे मार्ग ते चलना है और सच तक पहुंचना है। काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा ठाठे हो।

पर ए समा ए युग ते कलाल है। काम दियां बोतला काम दी शराब सजा के बैठा है, पर ए किस प्याले विच पीती जांदी है और साकी कौन है, पिलाण वाला कौन है। कहिंदन कलाल होवे शराब होवे प्याला नहीं साकी नहीं तो मैखाने दा रंग नहीं जमदा। इस कलाल दा जो मैखाना है रंग जमे आया है। काम मद कल कल वाली काम मद मनुआ पीवण हार क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। प्याला है क्रोध दा साकी है अहंकार और शराबी शराब दे पीण वाला है मनुख दा ए मन। तन भावें सारिया दे पानी पीण वाले हवन मन ते सारिया दे शराब पीण वाले। तन भावें दुध पीण वाले हवन मन ते सारिया दे शराबी ने। ए गल वखरी है दिस पैंदा है ए मुंह नाल दुध पी रहे है मन नाल शराब पी रहे है। मुंह नाल भोजन छक रहे है पर मन नाल ते शराब ही पी रहे है। शराब ही काम दी शराब। शराब दा काम की है बेहोश करना। काम वासना एक ऐसी बेहोशी है जिस विच मनुख नू अपना नाम धाम कुछ भी चेते नहीं रहिंदा। कहिंदे जन्म दा कारण भी बेहोशी है मरण दा साधन भी बेहोशी है। बेहोशी च जमदा है बेहोशी च मरदा है। बेहोशी दे च मरण दी क्रिया चलदी है और बेहोशी दे च ही जन्म दी क्रिया चलदी है। बेहोशी हावी है जद काम दे च होश हो गया है तो फिर मरण दे च भी होश होवेगा और जिसका मरण दे च होश हो गया है ना फिर जन्म ना फिर मरण फिर तो अगम्मी दुनिया दा वासी हो जांदा है। बहुत वड्डे अपराध करने अवन तो कई दफा मनुख अपने आप नू थोड़ा बेहोश करदा है शराब पींदा है। ते जे काम दी शराब दा नशा मनुख दे मन नू हर वक्त चढ़िया होवे तो इस दीआं अखां ते हर वक्त मैलियां रहणगीआं। इस दा तन ते

ਜਿਸ ਸੰਤ ਦਾ ਜਗਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਰੱਖਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਗਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਆਪ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ? ਪਰ ਹੈ ਪਰਮ ਬੁਲੇਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚ ਇਹ ਫਕੀਰ ਤਕਸੀਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਿਹਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਜਦ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਜੈਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਸਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਏਥਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਮਨਸਫ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਤਰਸ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਰਿਆਇਆ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਨਸਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਤਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਲਾਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਖਰ ਮਾਹੌਲ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਅਸ਼ਕਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਦ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਦੋਵੇਂ ਬੋਲ ਬੜੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਕਹੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ?
پھر کیڑی گل دی چنتا. زہر دا پیالہ اس نے خوشی خوشی نال پی لیا. سولی تے چاڑ دیتا گیا ایک بے قصور عیسیٰ. ساری زندگی در در دیاں ٹھوکراں چ لنگی محمد صاحب دی. بدر دی لڑائی دے چ آپ دے اگلے دند بھی پتھر نال توڑ دیتے گئے سن. محمد صاحب دے اگلے دوویں دند توڑ دیتے گئے سن. پتھر چک کے ایسا زور دا ماریا کہ دوویں دند توڑ دیتے گئے. اور جوان شریر ہوئے تے پختہ دند ہوون تے پتھر نال توڑے جان تسی خود اندازہ لگاؤ کتنی پیڑا ہوئی ہونی ہے, شریر نو کتنا کشٹ ہویا ہونا ہے. ساری دی ساری زندگی دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی سنگرش دے چلنگی ہے. اللہ یار خان تے کہندے نے آگا نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا, آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا. تسی تے ایک رات بھی سکھ دا آرام نہیں کر سکے. ساری زندگی سنگرش دے چلنگی بھج دوڑ دے چلنگی. اللہ یار ہاں کہندا ہے اے تے ساگر دی طرح نے, جویں اوپر لہراں ادھر بھج رہی ہیں ادھر بھج رہی ہیں, تھلے ٹھہراؤ ہے. اندروں اے درویش نے باروں تے بالکل راجے نے. بھج دوڑ بڑی ہے پر اندر بردی ٹکی ہوئی. اسے نو نند لال کہندے نے حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ. باروں بڑی بھج دوڑ ہے, اندر سکون ہے شانتی ہے تے بھانے دچ رضا دچ رہن دی برتی بھی ہے. پو ماں دی ٹھنڈی رات ہے, پیراں چ جوتی نہیں سنگی ساتھی بھی نہیں, دو دن دا ان بھی پیٹ دچ نہیں گیا, اور ماچھی واڑے دا اے مرو تھل ٹھنڈی ریت اتھے ہی سو کے آپ کہندے نے یارڑے دا سانو ستھر چنگا پٹ کھیڑیاں دا رہنا. جگت دے اوتاری پرشاں نال سنسار نے کیتا کی ہے تال میل نہیں بیٹھا. میں پھر عرض کراں جس سنت دا سنسار نال تال میل بیٹھ جائے سنسار تو کوئی اچا نہیں. یہ بھی میں عرض کرتے ہیں جس سنت دا راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے اجوکے راجنیتکاں نال یا پرانے نال وہ انہاں راجنیتکاں تو کوئی اچا نہیں ہے, اتنا ہی ہے. نہیں تال میل بیٹھے گرو نانک دا بابر نال, نہیں تال میل بیٹھے گرو ارجن دیو جی دا جہانگیر نال, نہیں تال میل بیٹھے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دا شاہ جہاں نال, اور نہیں تال میل بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی دا اورنگزیب نال, بالکل نہیں بیٹھے. اور اقبال نے تے بہت قیمتی گل کہہ دیتی, کہندے سارے سنسار وچ دو پرش ایسے نے جو ادوں بھی نہ سمجھے گئے اج بھی نہ سمجھے گئے. کچھ سما پا کے باقی مہاپرش انہاں دی کچھ سمجھ آئی تے لوگاں نے پوجنا شروع کیتا, جیسے کہ عیسیٰ نو ادھوں تے اصولی تے چاڑیا, ادھوں تے محمد صاحب دا جیونا حرام کیتا ہویا سی, ہن سارا عرب مسلمان. پر ایک حقیقت ہے دو پرش انہاں نو اپنے دیش دے وچ بھی رتبہ نہیں ملیا, ایک مہاتما بدھ ایک گرو گوبند سنگھ, انہ دوہاں نو نہیں ملیا. غضب دی گل دوہاں دا جنم بھی بہار دے چ ہے. مہاتما بدھ بھی بہار دے چ پیدا ہوئے, دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بھی بہار دے چ پیدا ہوئے, پٹنہ بہار اس علاقے چ. یہ قبول کیوں نہیں ہوئے؟ ورن ونڈ نو منن تو انکار کر دیتا مہاتما بدھ نے, اور ورن ونڈ دیاں تجیاں اڑا دیتیاں گرو گوبند سنگھ جی نے. ذات پات نو منن تو انکار کر دیتا مہاتما بدھ نے, اور ذات پات نو منن تو انکار کر دیتا گرو گوبند سنگھ جی نے. برامن دی رو ریتی تو بالکل نرالی چال چلی مہاتما بدھ نے, اور کلگیدھر نے بھی صاف کہہ دیتا جب اے گئے بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتیت. بپر ریتی کی ہے کہ جنم تو ہی کوئی شودر ہے, جنم تو کوئی برامن ہے. جنم تو کوئی برامن نہیں ہو سکتا, جیون تو برامن ہو سکتا ہے. جنم تو کوئی شودر نہیں ہو سکتا, جیون تو شودر ہو سکتا ہے.
जन्म तो कोई संत नहीं हो सकता, जीवन तो संत होवेगा। तो जन्म तो कोई चोर नहीं हो सकता, जीवन तो चोर होवेगा। कर्म करके पहचान होवेगी, पर वो जन्म तो पहचान करते सन, कर्म तो नहीं। महात्मा बुद्ध सहमत नहीं होए, मनुख की पहचान उसके कर्म तो होगी, जन्म तो नहीं। हो सकता है कि चोरां दे घर भी संत पैदा हो जाए, किसी दुष्ट घर दे च भी संत पैदा हो जाए। होया प्रहलाद होया, हरनाकश की है दुष्ट है ते प्रहलाद की है संत है। और हो सकता है किसी देवते दे घर दे च भी दैंत पैदा हो जाए, बहुते होए ने गुस्ताखी माफ। गुरु रामदास जी महाराज गुरु नानक दी गद्दी दे वारस ते पृथ्वी चंद की है, उदा ते जहांगीर नाल तालमेल बैठे से, उते ता जिंदगी गुरु अर्जन देव जी नाल झगड़ता रहा, उते अपने पिता नाल भी लड़ता रहा। गुरु रामदास जी महाराज नूं कहना भी पिया, काहे भूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप। पर झगड़ता सी, ये लड़ता सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक कमी है धार्मिक दुनिया विच, जद कोई देख लैंदा है दिखा नहीं सकदा, जद कोई समझ जांदा है पूर्ण तौर ते समझा नहीं सकदा। बहुत बोले ने, बहुत बोले ने, कई दफा जगत दे अवतारी पुरुष कौन समझे है ते किदी समझ च आया है, किसने अपनाया है। समझाण विच असमर्थ रहे ने महापुरुष, और फिर जगत नाल सहमत ना होने करके जगत मुखालफत ते भी आया है, बड़ी भारी मुखालफत। मैं अर्ज करा, महात्मा बुद्ध दे पैर हिंदुस्तान दे चों उखाड़ दिते गए सन, उखड़ गए, अज तक उखड़े हुए हैं। भावे अंबेडकर ने यतन करके कोशिश करके दोबारा लाने की कोशिश की थी, उतनी गल नहीं बनी। और इसे तरीके दे नाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के भी पैरों आदि काल तो उखाड़न की कोशिश हुई, यह भी मैं अर्ज कर दिया। एक गल वखरी है, कुछ बात है कि ऐसी, हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। वरना सिखी दे आदि काल तो ऐसा होया। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, वकत दे राजनीतिका नाल गुरु नानक दी नहीं बनी, गुरु अर्जन देव जी दी नहीं बनी, गुरु गोबिंद सिंह जी दी नहीं बनी। सुकरात वकत दी राजनीति नाल सहमत नहीं होया, कीसा सहमत नहीं होया, मुहम्मद सहमत नहीं होया। सारा इतिहास पढ़ के वेख लो। इस वास्ते समाज नूं ते राजनीति नूं ए कबूल भी ना होए, और किधरे किधरे कह दिता गया पागल ने, साफ कह दिता कि गुरु नानक देव जी महाराज नो उतने चमड़े ने। आप कहते हैं दूर क्यों जाओ, गालबन सन दूर क्यों जाओ, गालबन सन कोई 40 देच महात्मा गांधी दे मुंहों भी निकल गया सी कि गुरु गोविंद सिंह भुला होया रह बर है। विचार की गल करद्या करद्या तलवार की गल कर लग पाया। शांति नाल पेश आन वाला एकदम क्रांति ते आ गया। बड़ोदे दे बहुत वड्डे जलसे दे च उन्हां दे बोल सन। खुशकिस्मती है उन्हां दिनां च जिंदा सन प्रिंसिपल गंगा सिंह, बहुत सियाणे, बड़े सुलझे है, बड़े आला दिमाग दे मालिक। वो जा पहुंचे गुजरात अहमदाबाद दे च, उदों महात्मा गांधी अहमदाबाद दे सन। और जद अपना तारफ कराया कि मैं सिख मिशनरी हाँ, सिर्फ इस विषय ते थोड़े नाल विचार करन लई आया कि गुरु गोबिंद सिंह एक पुल्ला होया रह बर है। खैर राजी हो गए। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा, आप गीता दा पाठ करदे हो और गीता नूं मां कहिंदे हो। हां मां है मेरी, सवेरे शाम ते गीता दा पाठ करदे सन। ते गंगा सिंह कहन लगे, थानू पता है
इस मां करके महाभारत का युद्ध होया सी। ए मां ना होंदी युद्ध नहीं होना सी, इस मां ने युद्ध कराया है। इतना वड्डा खून खराबा इस मां करके होया है, जिस मां नूं तुसी दिन रात नाल लई फिरदे हो, गीता करके होया है। अर्जन हथियार सुट के मैदान जंग छोड़ के जा रहा सी। उन्हें साफ कह दिता सी, ऐ भगवान मैं नहीं लड़ना, इस सामने मेरा चचेरा भरा है दुर्योधन, इस सामने मेरा पितामा खड़ा है भीष्म, और उस सामने मेरा गुरु खड़ा है मेरे नाल लड़न वास्ते द्रोणाचार्य। अपने गुरु नूं मार के, अपने पितामे नूं मार के, अपने भरा नूं मार के अगर मैनूं जित मिली भी, तो इस तरह के सिंघासन ते बैठ के मैं की राज करना है, स्वय रोना ही होवेगा। मैनूं इस तरह का राज नहीं चाहिए जो अपने भरावां नूं मार के मिले, अपने बुजुर्गां नूं मार के मिले ते अपने गुरु नूं मार के मिले। ये अर्जन की सोचनी बड़ी गजब दी। पर कृष्ण समझांदे ने अर्जन, अपने जिस्म दे अगर कोई मवादी फोड़ा निकल आए ते बड़ी पीड़ा होवे, बड़ी दर्द होवे, ते ये थोड़ी आखी दा इसनूं चीरा नहीं देना, मवाद नहीं कढ़नी। ठीक है, फोड़ा अपना है, बिल्कुल अपना है, तां वी जरा दे हवाले असीं करांगे, नूं चीर देवे, मवाद कढ़ देवे, ताकि शरीर नूं शांति मिले। ये सब तेरे अपने ने, पर अर्जन देश धर्म नूं ते मनुखता नूं चमड़े मवादी फोड़े ने, तो इन्हां नूं चीर दे, तैनूं कोई पाप नहीं लगेगा। कहिंदे ने इस ढंग नाल समझाया अर्जन ने, सुटे हुए शस्त्र फिर चुक लए। अला यार खां जोगी ने भी इसका जिक्र किया है, और बड़े सोहने अंदाज दे, कटवा दी ये शिश शाम ने गीता को सुनाकर। गीता का फिलसफा सुना के सुटे हुए हथियार चुकवा दिते श्री कृष्ण ने, अर्जन ने चुक लए। अला यार खां कहिंदा है गीता दा फिलसफा सुना के किसे दे अंदर बीरस भरना ए गल कुछ होर है, पर ऐ गुरु गोबिंद सिंह तेरी गल कुछ होर है। क्यों? कटवा दिए शिश शाम ने गीता को सुना कर, रू फूंक दी गोबिंद ने बेटों को कटा कर। गीता दा फिलसफा सुना के किसे अंदर जोश भरना ए गल कुछ होर है, पर अपने ही बच्चियां नूं शहीद करा के किसी अंदर मरण का चाव पैदा करना ये गल कुछ होर है। अला यार खां, किसी नूं पानी विच तैरना सिखाना होवे पहले आप तैरना पैंदा है, किसी नूं मरण की जाच सिखानी होवे पहले आप मरना पैंदा है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है गल। ये अला यार खां कहिंदा है। खैर, जद गंगा सिंह ने कहा इस मां करके युद्ध होया है, जंग हुई है, बड़ा भारी खून खराबा होया है, तो यह मां भी भुली हुई रैबर हुई, पर कृष्ण भी भुले रैबर हो। अर्जन ते जा रहा सी, वो ते कहिंदा सी मैं हिमालय चले जाना है, मैं उत्तराखंड जाना है, तप करना है, जप करना है, मैं नहीं लड़ना, यह राजपाठ मैनू नहीं चाहिए, मेरे मन विच बैराग पैदा हो गया है, लड़े बिना बैराग पैदा हो गया है, क्योंकि मैं सोचता पाया अगर जित भी हो गई भरावां नूं मारांगा, गुरु नूं मारांगा, पितामे नूं मारांगा, ते फिर राजपाठ मिलेगा, इस सारी जिंदगी मेरे मन ते बोझ पिया रहेगा कि मैं अपने भरा नूं मार के राज लिया, मैं अपने गुरु नूं मारिया, मैं अपने पितामे नूं मारिया, मैं नहीं लड़ना। लेकिन कृष्ण ने लड़ाया, आखिया नहीं, पावें तेरा भरा है पर दुष्ट है, देश धर्म नूं चंबड़े होया मवादी फोड़ा है, गलत है, पावें तेरा गुरु गुरु है पर गलत पक्ष लै रहा है। वाकई इस गुरु ने गलत पक्ष लिया। भरी सभा विच द्रौपदी नग्न कीती जा रही है, गुरु बोलदा नहीं। भरी सभा दे द्रौपदी नग्न कीती जा रही है, भीष्म पितामा बोलदा नहीं। ये वक्त दे गुरुआं दा हाल सी, जब गुरु ही आवाज नहीं उठाते पे जुलम के खिलाफ, तो बाकिया ने की खाक उठानी सी, किस तरह उठानी सी। इस वास्ते कृष्ण ने कहा भावें गुरु है
पर इस सच दे पक्ष दे च नहीं खड़ा। भावे तेरा पितामा है पर यह भी झूठ की मदद से खड़ा है। तू चीर दे इना नू, पाप सारा मेरे जिम्मे है। इसका मैं संकल्प करदा तू लड़। यह हल्ला शेरी कृष्ण ने दिती, सुटे शस्त्र चुक लै। तो प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा इस महाभारत के युद्ध बारे, इस खून खराबे बारे, इस गीता बारे जिसनों तुसी मां कहिंदे हो, इस बारे आपकी की राय है? पहले तो महात्मा गांधी ने कहा यह युद्ध नहीं हुआ, यह मानसिक युद्ध की बात है, यह लड़ाई अंदर हुई है, बाहर नहीं हुई। तो गंगा सिंह जैसा रोशन दिमाग बंदा कहन लगा जे यह लड़ाई कुरुक्षेत्र देश नहीं हुई, सिर्फ अंदर ही हुई है, तो फिर कृष्ण जी भी मथुरा देश नहीं हुई, कोई अंदर ही हुए होंगे, वो भी कोई नहीं हुए। कहिंदे ने महात्मा गांधी ने अपने बोल वापस ले, ए मैं समझदा उसकी बुजुर्गी सी कि उसने कबूल कर लिया, बोलो ही है मैं तो। जो उन्हों का हिंदी का गुजराती का पेपर निकलता से उसने तस्लीम किया भी मेरे को शब्द गलत निकले ने, मैं सिख जगत तो माफी मंगना। उसने अपने शब्द वापस ले सन, अपने बोल वापस ले सन, वरना भारत के तमाम प्राचीन अवतारी पुरुष अपने हाथ शस्त्र रखते ने, राम दे कोल धनुषबाण है। यह गल वखरी है, महात्मा गांधी का धार्मिक तालमेल से बैठा कृष्ण नाल, लेकिन राजनीतिक तालमेल कृष्ण नाल नहीं बैठे, वह राम राज चाहते सन। कहने राज चाहिए राम दा, कमाल की गल, धर्म चाहिए कृष्ण दा, राज चाहिए राम दा, कृष्ण दा राज नहीं चाहिए। राम राज की वह गल करते रहे, रामायण एक दिन भी नहीं पढ़ते सन, पढ़ते गीता सन। कारण श्री कृष्ण वो उन्हां दी सोच नहीं, किसी वक्त खुलासा मैं थोड़े सामने रखांगा। वो कहिंदे सन एक पासे मनुख है, एक पासे कानून है, ते जे मेरे सामने मसला खड़ा हो जाए, कानून नूं बचाना है कि मनुख नूं बचाना है, तो मैं मनुख नूं बचावांगा, कानून रद्द हुंदा है ते होण दिओ। मनुख कानून लई नहीं है, कानून मनुख लई है। मनुख मर्यादा लई नहीं है, मर्यादा मनुख लई है। राम दा फैसला यह सी जे मनुख सामने ते मर्यादा सामने, ते दोहां दे च इक नूं बचाना होवेगा, मनुख नूं कुर्बान कर देंगे, मर्यादा बचावांगे। इस वास्ते उन्हां नूं मर्यादा पुरुषोत्तम आख्या गया, मर्यादा बचावांगे। बंदे नूं फांसी ते चाड़ना है तो चाड़ देंगे। ब्राह्मणां दी बनाई हुई मर्यादा सी कि शूदर वेद नहीं पढ़ सकता और शूदर वेद नहीं सुन सकता, अगर सुन लवे तो उहदे कन्न दे सिक्का डाल दो और उन्हें फांसी ते चाड़ दो। राम राज दे शंभूक नाम दे जीवन नूं फांसी ते चाड़िया गया है। मैं ते भारत दे च ऐसा भी आख्या, राम राज चाहते हो जितने शूदर ने इन्हों फांसी ते चाड़ना पैगा, क्योंकि रामायण भी पढ़ते हैं, वेद भी हुण सुनन लग पए ने, मंदिर च भी जाण लग पए ने, किधरे तुसी नहीं भी इन्हों जाण देंदे। इन्हां दे सारयां दे कन्नां च शीशा ढालना पैगा, फांसी ते चाड़ना पैगा। राम राज दे च यही कुछ होया सी। और जे किधरे किसी धोबी ने किसी ने एवें खामा खा साडी पत्नी दे उत्ते शक कीता ते घरों भी कढ़ना पैगा, क्योंकि राम ने घरों कढ़ दित्ती सी धोबी दे कहने ते। फिर जिस किसी पड़ोसी ने उंगल उठाई के स्त्री ठीक नहीं तो घरों कढ़ो। जिथे तक मर्यादा ते कानून का सवाल है, कृष्ण का यह कहना सी कि मैं फिर मनुख नूं बचावांगा, मर्यादा कुर्बान होंदी ते होण दिओ। राम कहिंदे सन नहीं, मैं मर्यादा नूं बचावांगा, मनुख कुर्बान होंदा ते होण दिओ। इस वास्ते गांधी ही राज ते चाहते सन राम दा, धर्म चाहते सन कृष्ण दा, क्योंकि कृष्ण दे धर्म दे च ज्ञान बड़ा सी, जो गीता दा फिलसफा है बड़ा ज्ञान है, बड़ी गहरियां गल्लां ने, अर्जन दे बहुत उच्चे उच्चे प्रश्न ने, और कृष्ण दा बहुत बड़ा जवाब है। और गजब दी गल, जिसने शस्त्र चुके होवन ते अपने ज्ञान ते दलीलां दे नाल फिर शस्त्र चुकवा लवे, तो दलीलां ते बड़ियां प्रबल सन, समझाण दा ढंग ते बड़ा प्रबल सी, राम कोल नहीं सी, इह वी मैं अर्ज करदे आं। इस वास्ते हिंदू जगत 14 कला अवतार मनदा है राम नो, 16 कला मनदा कृष्ण नो, उसनों वड्डा मनदा है, उसनों महान मनदा है।
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यह बोल जब कुछ एहलकारा ने कहा तुसी फकीर हो थोड़े हाथ दे च माला चंगी लगती है थोड़ी जबान ते अल्लाह खुदा का ना चंगा लग रहा है कि तुसी किहड़े पासे पै गए है पता सतगुरु की कहंदे ने श्री मुखवाग पातशाही दसवीं जफरनामा बलाचार गई दरमिया आमदम मैं ते लाचार हो गया मजबूर हो गया मेरी माला ने कम नहीं किया मेरी शांति ने भी कम नहीं किया मेरे ज्ञान का भी असर नहीं होया पवन जब चल रही है दरखत झूलते ने पत्थर नहीं झूलते और पत्थरों देते उस पवन का कोई असर नहीं पैंदा मैं ज्ञान की हवा बड़ी चलाई मैं शांति का वातावरण बड़ा बनाया मैं मिठास की खुशबू बड़ी खिलेरी पर पत्थरों से कोई असर ही ना होया बलाचार भी दरमिया आमदम बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम मैं ते लाचार हो गया मजबूर हो गया तोप चुक ली बंदूक चुक ली तलवार चुक ली वरना यह मेरे सुभाव के अनुकूल नहीं है गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं यह मेरे सुभाव के अनुकूल नहीं है हेमकुंड का किथे तपीश्वर हो गए ते पुराने संस्कार ऋषि मुनिया वाले होवन चुकनी पै जाए तलवार तो फिर कुछ ना कुछ तो मजबूरी हो ही होनी मजबूरी आप कहते पे ने बलाचार की दरमिया आमदम बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम चुंकारस हमा हिलते दरगुजस्त हलालस्त बुरदम्ब शमशीर दस्त श्री मुखवाक पातशाही दसवीं ए औरंगजेब जद मेरी शांति मेरे विचार मेरे ज्ञान तेरे ते प्रभाव ना पावन तो तेरे जैसे दुष्ट लई तलवार चुकना भी मैं अपना धर्म समझदा चुंकार समा ही लिते दर गुजस्त हलालस्त बुरदम ब शमशीर दस्त इस बुले खिच ना पी कि मैंने मैं मेरा संत हाँ इस संत के अंदर कोई सिपाही भी बैठा है किधर ऐसा ना समझ लें कि सिर्फ फकीर है इस फकीर के अंदर कोई क्रांतिकारी भी बैठा है तालमेल नहीं बैठा गुरु गोबिंद सिंह जी का औरंगजेब नाल तमाम हिंदुस्तान के फकीर ने सजदा कर दिता सी औरंगजेब न नहीं झुके गुरु गोबिंद सिंह और किधरे झुक जाते तो पता है हालात की होने सन भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते ने छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती होवत कुचीलता कते बन कुरान की पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते बरन गरक जाते सहित विधान की देवी देव देहरे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम मसूर मूर्त ना होती जो पे करना निधान की ए बख्शिश भरी मूर्ति जे ना होती भारत विच एक मंदिर भी नहीं होना सी किधरे भी गीता दी कथा नहीं होनी सी कोई वेद पुराणा दा नामो निशान नहीं होना सी इस तरह दी एक मूर्ति पंडित मदन मोहन मालविया ने तो कहा जो गुरु गोबिंद सिंह जी का एहसान है भारतवासियों से वो इस ढंग नाल चुकाया जा सकता है कि हर भारतवासी के घर विच एक सिंह होवे गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीर होवे जीवदी जागदी सिर्फ तस्वीर ना टंगी है कागज की जीवदी जागदी तस्वीर हर घर विच होवे ये पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार सन मालवीया के यह गल वखरी है कि इस तरह की सोचनी वाले खो गए इस तरह के दूर दृष्ट जो है बंदे खो गए ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਏ इतने क्रांतिकारी इन्हां दे बोल इतने उच्चे आदर्श इतने बारीक बीनी जगत दा तालमेल नहीं बैठिया संसार ना समझ सकिया महात्मा बुद्ध नूं ना गुरु गोबिंद सिंह जी नूं किधरे महात्मा बुद्ध नूं कह दिता है नास्तिक है अज तक भी ब्राह्मण कहिंदे नास्तिक है जे महात्मा बुद्ध नास्तिक है तो फिर कोई आस्तिक नहीं है थोड़े दिन पहले ही चंगे चंगिया की जबान चो निकलिया सी अगर गंगा सिंह उदो समाधान ना करते तो सिलसिला चलते ही रहना सी कि गुरु गोबिंद सिंह बोला होया रहे पर
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੈਸੇ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਐਸਾ ਆਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਪੈਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਵੋ ਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੋਕੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਵੋ ਕਮ ਹੈ, ਹਰ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਨਗਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਸਫਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਲਿਖੋ ਵਸਫ ਕਹਾਂ ਤਾਬੇ ਰਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਆਂਖ ਸੇ ਕਿਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕੁਲ ਬਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਸਾਗਰ ਕੋ ਯਾ ਮਝਧਾਰ ਕੋ ਯਾ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਐਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਣਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ? ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 33 ਤਵੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਖਾਮਾ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੈ।

पहला सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोणे खट तुरसी मुख बोलना मारण नाद किए छती अमृत भाव एक जाको नदर करे बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। जिंदगी दा

ঘোড়ে পাখর সোয়নে সাখতে বুঝন তেরি বাট তর্কস তীর কমান সাঙ্গ তেগ বন্দ গুণ ধাত वाजा नेजा पतसों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नू बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ां दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ां दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दिया अपनिया कुछ कामनावां ने मन दिया अपनिया कुछ इच्छावां ने और इना कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नूं जन्म दिता है। इतना

ये तन पीढ़ी है, मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद दिच विकार पैदा करे। ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद दिच बेरसी नू पैदा कर देवे और शरीर नू रोगी कर देवे। सतगुरु उस तों जो है वर्ज देने, एक गल वखरी है कि शरीर अलग अलग ने। कोई वायु प्रधान शरीर है, कोई कफ प्रधान शरीर है और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक स्वभाव नू वेख के खाणिया प्रति जो सुचेत हो जांदा है उस शरीरक पीड़ा तो बच जांदा है, मानसिक विकार तो बच जांदा है। और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे, एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जांदी है। पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे, पहनना सिर्फ नुमाइश होवे, पहनना अपनी बिरती नू भी बार मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नू भी अपनी तरफ खिंचे, ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नू जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानू वरजदे ने, बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था दा जिक्र करदे ने, जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा। और एही एक ऐसा शब्द है जिस दे चार रहाओ ने, चार ठहराओ ने। ए अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है, जिस दे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार रहाओ ने। चार रहावां दे भाव, चार भाव सतगुरा ने साडे सामने रखे ने। प्रथम शरीर, और शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे तो फिर पहनना, और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नू नुमाइश करन दा चाव पैदा होवे ते दूजियां दी बिरकती नू भड़कान दा मसला खड़ा होवे। साहिब कहिंदे नहीं, ए भी खुआरियां नू जन्म देंदा है। खाण पीण पहनण दे मसले तो जैसे मनुख निश्चिंत होंदा है तो फिर मन दी दुनिया सामने आउंदी है। कहिंदे ने पशु सुखी ने क्योंकि अक्सर प्रकृति उन्हां दीयां शरीरक लोड़ां दी पूर्ति कर देंदी है। पर ए जो मन है मनुख दा, ए ऐसा है कि शरीरक लोड़ां दी पूर्ति हो जाए और जितनी ज्यादा हो जाए ए उतना ही भयंकर रूप दे च मंग करन लग पैंदा है। इत्थे मनुखी मन ने बड़े भुलेखे खादे ने और मनुख ने बड़े संपन्न तरह दे मनोरंजन दे साधना नू जन्म दिता है। जिड़े जिड़े देश जितने अमीर ने, जिड़े जिड़े घराने जितने ज्यादा संपन्न ने, देखे उत्थे मानसिक बेचैनी उतनी ज्यादा है। सतगुरु आप भी कहने ने कि वड़े वड़े जो दीसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। महाराज कहने ने दुनिया दे तमाम वड़े मनुखां ते निगाह मारनी। वड़े मनुख कौन? जिन्हां कोल धन संपदा ज्यादा है। को ना वड़ा माया वड़ियाई, गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी जो है करदी है। ए मनुख वड्डा नहीं, ए वडपणा धन ते खड़ा है, ए वडपणा संपदा ते खड़ा है, ए वडपणा प्रभुता ते खड़ा है, सता ते खड़ा है। और जितनी ज्यादा धन संपदा है उतनी ज्यादा प्रभुता है, जितनी ज्यादा सता है उतनी ज्यादा प्रभुता है, और जितनी ज्यादा प्रभुता है महाराज कहंदे ने उतना ही वड्डा है, और जितना ज्यादा वड्डा है उतनी ही ज्यादा चिंता है। बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। इसनु एक होर ढंग नाल भी धन गुरु नानक देव जी महाराज ने खोले है, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे भरमंता। जिस को ले धन संपदा ज्यादा है उथे अधिक चिंता है, पर जिथे लोड़ जोगा भी नहीं उथे भटकना है।

ਉਥੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਰਮ ਨੇ ਔਰ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਦਾਵਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਭਟਕਣ ਵਿਚ ਭੁੱਲਣਾ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਮੁਫਲਸੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਜਹਿ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥੇ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੈ ਉਥੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਨੇ ਨੇ ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਨੇ ਉਥੇ ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਗਰੀਬ ਅਜੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤਨ ਤੇ ਚੀਥੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਸੰਪੰਨ ਸੀ ਔਰ ਇਰਾਨੀਆਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਹਾਵੀਰ ਹੋਣ, ਆਖਿਰ ਰਾਜਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲੀ, ਧਨਾੜ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇ, ਔਰ ਜਦ ਧਨਾੜ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਸਤਾਧਾਰੀ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਲ ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਨ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਸੀ ਹਵਾ ਚਲੀ, ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਵੀ, ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਵਤਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸੰਤ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਝੌਂਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਤੋ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੁਫਲਸੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਔਰ ਮੁਫਲਸੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਯੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥੇ ਮਹਿਮਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ,
योग दी महानता वध गई है, आत्म अभ्यास दी उमंग ते तिरंग वध गई है, लेकिन धन संपदा दी तिरंग ते उमंग हिंदुस्तान दे च वध गई है। अज धन दी खातर इस देश दे धर्म नू छोड़िया जा सकदा है, पर उस देश दे च ऐसा है कि धर्म दी खातर धन नू छोड़िया जा सकदा है, संपन्न घरानिया दे बच्चे हिपी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नू, हर तरह दे सुख नू, और उन्होंने बुलंद बांग कह दिता आत्मक चैन चाहिदी है, सुकून चाहिदा है, शांति चाहिदी है, प्रभु चाहिदा है, आत्म प्रकाश चाहिदा है। तो खैर जैसे जैसे शरीर दा मसला हल होवे, मन बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है, और शरीर पहले इदा मसला पहले हल करना पैंदा है, और इदा मसला है खाना पीना पहनना, पर ए संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा, ए पहनना अगर संजम दे च ना होवे, मर्यादा दे च ना होवे, तो ए भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा, और तन दियां सारियां लोड़ां पूरियां हो जान ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे, तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया, मनोरंजन मन दी लोड़ है, नाटक चेटक तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनिया, इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानिया दे नवे तो नवे पैदा हो रहे ने, लेकिन मन दी अपनी एक अवस्था है, जिस चीज नू एक दफा वेख लवे ओनू पुराना कर देंदा है, ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करदा, मन अगे जांदा है, मन गतिमान है, इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है, और ये रुकदा नहीं, ये लंघ जांदा है, और लंघ के हर चीज नू पुराना कर देंदा है, हर वस्तु नू पुराना कर देंदा है, रंग पुराने हो जांदे ने, रूप पुराने हो जांदे ने, महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां ने, कहानियां पुरानियां हो जांदियां ने, संगीत दियां धुनां पुरानियां हो जांदियां ने, माहौल पुराना हो जांदा है। अज देखदे हां संपन्न घर जो है देशां दे च कोई वध तों वध दो साल ही मकान दे च रहिंदा है, तीजे साल मकान बदल देंदा है, नौबत इत्थे तक आ गई परिवार बदलने ने, पति बदलना है, पत्नी बदलनी है, पर हुण कौन दसे ए जो मनोरंजन है ए मन दी मंग नहीं, ए ते इस तरह है जैसे रोंदे हुए बच्चे नू छणकणा दे के वक्ती तौर ते बुलाया जा सकदा है, पर उते दूध लई रो रहे है, उते मां लई रो रहे है, वक्ती तौर ते ए छणकणा दे के बुलाया जा सकदा है, प्रचाया जा सकदा है, लेकिन फिर भी उसने छणकणा सुट देना है, हथ मां दी तरफ पसारने ने, दुध दी मंग करनी है। हू बहु देखदे पया संपन्न घरानिया दे लोग इना छणकणिया ने सुट रहे ने, और कहने नहीं अस्थाई सुकून चाहिदा है, मसनोई नहीं दायमी आनंद चाहिदा है, अस्थाई आनंद चाहिदा है, अस्थाई खेड़ा चाहिदा है, तो ओ जड़ा अस्थाई खेड़ा है ओ ते जो अस्थाई है जो टिकिया होया है जो दायमी है जो हमेशा है उस तो ही प्राप्त हो सकदा है, और ओ ते केवल परमात्मा है, ओ ते केवल ईश्वर है, उस तो ही लग सकदा है। तो मनोरंजन दे जेड़े जेड़े साधन उस दौर दे विकसित होए सन, सतगुरुदेव जी महाराज उस दा जिक्र करदे ने, सुंदर घोड़ा होवे, सोने दी काठी होवे, लगाम भी जर्रीदार होवे, और कृपान तलवार गात्रे वाली पहनी होवे, तीर कोल होवन पत्था होवे, और तरह तरह दियां खुशबुआं होवन, और इस सब कुछ ला के घोड़े ते असवार होके निकलना एक मनोरंजन सी, एक मन दी लोड़ सी, नेजेबाजी एक खेडां, इस तरह दे मनोरंजन वक्ती तौर ते मन दा बहलावा सी उस दौर दे च विकसित होए सन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नहीं मन दी ए लोड़ नहीं, और इस लोड़ नू किवें पूरा करना है, धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने घोड़े पाखर
सोयने साखत बूझण तेरी वाट। हे परमात्मा, जो मैं तेरा रास्ता जान लिया है, जो मैं तेरे रस्ते नु समझ लिया है, मानो ए मेनू घोड़े की प्राप्ति हो गई है। और ऐसा घोड़ा जिदे ते जत सदी काठी पई हुई है, सोने की काठी पई हुई है। कहिंदे ने ए कोई लाजमी नहीं कि मनुख नु अपने घर दे ही रस्ते का पता होवे, जो इट्टा ते पत्थरां दा बने होया मकान है और उस दे च आ गया है। अगर यही उसका घर है तो एक दिन इसे ही घर चो चार मनुख चुक के ले जाते हैं और काडो काडो होई सतगुर की बाणी कहती कड्डो कड्डो। तो एक गल स्पष्ट हो गई, इत घर घर नहीं सी, सरां सी, इत्थे ते सी प्राउणे सी मेहमान, घर ते कोई होर है। बाबा फरीद उसका जिक्र करते हैं, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सरपर मैथे आवना मरनो ना डरियाओ, तन दा घर शमशान है मन दा घर भगवान है, तन दा घर कबर है मन दा घर खुदा है। तो बाबा फरीद कहिंदे घर ते आवाजां पिया मारदा है, ऐ तन कबर आवाजां पिया मारदा है, कबर तैनू बुला रही है, गोर निमाणी सड करे। गोर कबर नू कहंदे ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवना मरनो ना डरिया, मौत दा भय दूर कर। ऐ तन तेरा घर शमशान ही है, ऐ तन तेरा घर कबरी है, पर मन तेरा घर खुदा है। तेरा घर शमशान नहीं है, तेरा घर भगवान है। अपने घर की चिंता कर और उस घर के रस्ते का नहीं पता। और असी देखते हां सारी जिंदगी लोग कई दफा धर्म के मार्ग भी बदलते रहते हैं, रस्ते बदलते रहते हैं। इस नू एक उर्दू का महान शायर ने अपने आलमाना ढंग नाल बयान किया है। वो कहिंदा है, सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिंदगी बड़ी थोड़ी है और रस्ते ही कोई मनुख बदलता रहे तो जिंदगी रस्तियां ची खत्म हो जाती है, मंजिल तक पहुंचना औखा हो जाता है। ये छोटी जी जिंदगी कोई एक रस्ता चुन लेना चाहिए है। और बड़े प्रमाणिक रस्ते जगत देश बने, शाहरा साढ़े देश दे चार वड़ियां शाहराह बनिया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन मत, गुरु मत, सिख मत। इस तरह इस देश तो बाहर भी चार वड्डे शाहराह बने, शाही रस्ते, सरकारी रस्ते, बहुत वड्डे महान और खूबसूरत रस्ते, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी। पर कई दफा मनुख की अपनी आदत आंदी है विंगे टेढ़े रस्ते ते चलना। कदी कदी शाहराह ते चलन वाले उकता जांदे ने मंजिल नू दूर समझ के, तो विंगा टेढ़ा चलन लग पैंदे ने और विंगा टेढ़ा चल के भटक जांदे ने, पर कदमां दे निशान ते बन जांदे ने उनां दे, उनां दे कदमां दे निशानां दे उत्ते दुनिया होर चलन लग पैंदी है। और इस तरह विंगे टेढ़े रस्ते बन जांदे ने, ओ पहुंचदे किधरे भी नहीं, सहरा दे ची भटका के रख देंदे ने। इस तरह दे मार्ग इस्लाम दे च बने, इस तरह दे मार्ग यहूदियां ते ईसाइयां दे च बने, इस तरह दे मार्ग हिंदू मत, सनातन मत, जैन मत, बौद्ध मत, सिख मत दे च बने, निकले छोटे छोटे रस्ते। पर ए किसे दी बेडंगी चाल ने शाहरा नू छड़िया और एक पासे भटकया, उहदे कदमां दे निशान, भटकण दे निशान जमीन ते रह गए। और उन्हां ही निशानियां नू कईआं ने मार्ग समझ के चलना शुरू कीता तो भटके हुए रस्तियां दे ते चलण वाले भटक गए। शाहरा अज भी असी देखदे हां उन्हां ते कोई बहुत भीड़ नहीं है। बकौले भगत कबीर,
जह मारग पंडत गए पाछे परी बहीर एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहो कबीर। जिस रस्ते ते चतर चलाक मनुख चल पे बड़ी भीड़ चल पई। तार्किक बंदा तर्क करण वाला जैसे रस्ते च औघट घाटी आई पहाड़ आया उन्हें किनारा कशी की थी और किनारा कशी कर दिया ही भटक गया। और ए पहाड़ जिन्हां ने अबूर नहीं करना सी उन्हां नूं भटकन चंगी लगी तो उस दे पिछे चलन वाले भी भटके और इस तरह दे भटकन वालियां दे करके चलन करके रस्ते बने। ए भटके हुए रस्ते करीबन करीबन सारी दुनिया दे जो है मौजूद ने जिन्हां दे ते चल के मनुख प्रभु तक ते नहीं पहुंचता भगवान तक ते नहीं पहुंचता पर हां रस्तियां दे च भटक के रह जांदा है। और ए साफ दिखाई देता है इस वास्ते एक आलम नु कहना पया मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिथे रास्ता कठिन दिखाई देवे मनुख उथे रास्ता बदलन दी जो है कोशिश करदा है ते प्रभु दा मार्ग मैदानी रास्ता नहीं है पहाड़ी रास्ता है। एक औघट घाटी राम की तहीं चढ़ रहे हो कबीर इसे नु रविदास कहंदे ने घट औ घट डूंगर घना एक निर्गुण बैल हमार रमैये से एक बेनती मेरी पूंजी राख मौड़ार। औ घट घाट उसनु कहंदे ने जिस देते चढ़ना बहुत कठिन होवे जिस तो लंघना बहुत कठिन होवे और चढ़ाइयां ते दम फुल जाए इस तरह दा ही परिपूर्ण परमात्मा दा मार्ग है। क्योंकि सुरत नु बुलंदियां ते लै जाना है ऊंचाइयां ते लै जाना है इन्हां ऊंचाइयां तो जो भी घबरांदे ने रस्ता बदल देने और पहली दफा जो रस्ता बदलदा है वह भटके वाला इंसान ओदे कदमां दे निशान पक्के रस्ते बना देंदे ने और उस एक दे भटकन करके बड़ी दुनिया भटकदी है। और इस तरह की भटकन करीबन करीबन सारे जगत दे जो है मौजूद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने यही मेरी घोड़े की असवारी है यही सोने की काठी है हे प्रभु जिड़ा मैं तेरे रस्ते नु जान लिया तेरे मार्ग नु जान लिया घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाड मैं जान लिया तेरा रस्ता की है उसका रस्ता की है जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तेरा नाम जपना ही तेरे राह ते चलना है तेरे मार्ग ते चलना है बाकी सब भटकना है। नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिंगार नानक के घर केवल नाम। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने साडे घर दे ते केवल नाम दा ही जप है और कुछ भी नहीं और यही एक मार्ग है यही एक सही मार्ग है बाकी सारी दी सारी जो है भटकना है। उदे रस्ते नु बुझना की है उदे नाम नु जपना और नाम जपन दे च पूरा भरोसा होना कि परमात्मा तक पहुंचने का यही मार्ग है यही रस्ता है। तो साहिब कहंदे ने जिहड़ा तेरे रस्ते नु जान लिया तेरे वाट नु समझ लिया बस यही साडे वास्ते घोड़ियां दी असवारी है। घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट तरकस तीर कमान सांग तेग मन गुण धात। हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे अनंत गुणा नु जो धारण कर लिया है यही साडे कोल भत्था है उस दे च तीर ने यही साडे कोल कमान है और यही तेग बंद जिस दे च तलवार रखी दी है उन्हूं कहिंदे ने तेग बंद गातरा यही साडे कोल ओ गातरा है और यही साडे कोल तलवार है केड़ा जो तेरे गुण साडे कोल ने ए जो ज्ञान आ गया ए जो शील आ गया है ए जो संजम आ गया है ए जो प्रेम आ गया है ए जो समदृष्टि आ गई है ए जो हृदय निर्वैर हो गया है निर्भय हो गया है यही ते साडे शस्त्र ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इसका बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र करते ने। आम कहा जाता है अवतारी पुरुषां कोल कुछ ना कुछ शस्त्र रहे ने। मुहम्मद साहब दे हथ दे तलवार सी अपने देश नू देखिए श्री राम दे कोल धनुषबाण सी द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी कोल सुदर्शन चक्र सी। किसे तार्किक ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नू कह दिता तुसी पंजवें गुरु नानक दी गद्दी दे वारस कलयुग दे अवतारी पुरुष थोड़े कोल कोई शस्त्र नहीं है। तो महाराज कहण लगे है वेखो
गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेण छारी, इस आगे टिके न को विकारी, गुरपूरे एगल सारी। साडे कोल गदा है गरीबी दी, विनिमरता दी, निर्माणता दी। साडे कोल खंडा भी है दुधारी केड़ा, जो सारिया दे चरणा दी खाक बन गए, हर एक दे पैरां दे थल्ले हो गए। सानू किसे दे सिर दे उपर बैठन दा शौक नहीं, सानू ते कदमां दे बैठन दा शौक है, सानू ते चरणा दे थल्ले बैठन दा शौक है। चोटी दे धार्मिक मनुख दी चाहत आउंदी है सारिया दे कदमां दे थल्ले बैठना, चोटी दे राजनीतक दी एह चाहत आउंदी है कि सारिया दे सिर ते बैठना है। राजनीति सिर ते बैठना है, धर्म नीति कदमां दे जो है बैठना है। तो महाराज कहंदे ने इह जो सारे गुण तेरे प्राप्त हो गए ने, इह साडे कोल शस्त्र ने। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने विनम्रता साडे कोल गदा है, सारिया दे चरणा दी जो खाक बन गए इह साडे कोल खंडा है। तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात, वाजा नेजा पतस्यों प्रगट करम तेरा मेरी जात। साडी इज्जत साडी मान मर्यादा साडी जात साडी पात एक ही है तेरी बख्शिश, ए जो तेरी रहमत हो गई है, ए जो तेरी बख्शिश है, तेरी बख्शिश ही साडी जात है, तेरी बख्शिश ही साडी इज्जत है, तेरी बख्शिश ही साडी मान मर्यादा है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार, होर असवारियां होर मनोरंजन दे साधन। साहिब कहंदे ने हे सियाणे मनुख सब खुआरियां नूं जन्म देंदे ने, सब दुख संताप नूं जो है जन्म देंदे ने, मन विकारी हो जांदा है, तन रोगी हो जांदा है। ऐसे मनोरंजना नूं इक पासे करना है, ऐसियां असवारियां नूं इक पासे करना है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपारे, नानक सच्चा पात साओ पूछ न सकरे बिचारे। बाबा होर सोना खुशी खुआरे, जित सु

की लोड़ नहीं है। निर्वैर बनन दी, निर्वैर जो है निर्भय बनन दी, दयालु बनन दी, इस तरह की कोई लोड़ नहीं है। बड़े बड़े कठोर बंदियां दे भी धियां पुत्र है गए ने, और बड़े बड़े जालम लोकां कोल भी सता है सी, बड़े बड़े दुष्ट मनुखां कोल भी संसार दे सुख है सन। सुख की प्राप्ति लई कोई सुरत उच्ची करन दी लोड़ नहीं। इस वास्ते मैं अर्ज करा, बड़े बड़े नीवे मनुखां कोल भी थानू दुनियावी सुख मिलणगे, बड़े बड़े दुष्ट बंदियां कोल भी थानू संसार दा सुख मिलेगा। क्योंकि सुख की है? संसार एक पदार्थ, यह दरखत की छाया है, परमात्मा रूपी दरखत की छाया है। छाया बदलती रहती है, अज इस पासे कल उस पासे, छाया दिच पलटा है। छाया जमीन ते मिल जाती है, जमीन तो उपर उठने की लोड़ नहीं है, पर फल चाहिए है। हो सकता दरख्तां दे फल जमीन दे ते गिरे भी मिल जान, मिलते हैं। नाम दा फल, आनंद दा फल जमीन ते गिरिया होया नहीं मिलेगा, सुरत उच्ची करनी पएगी, बहुत उच्ची करनी पएगी। वो चढ़ाइयां दा मार्ग है, जिसनु भगत कबीर ने कहा है कि जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। जिस रस्ते ते चतर चलाग ते कर्म कांडी मनुख चल पे ने, दुनिया बहुत उन्हां दे पिछे है, बहुत। जो कह दिन 10 मिनट दे समाधि लग जाएगी, असी थोड़ी मनोकामना दी पूर्ति कर देंगे। ऐ तवीज ले जाओ, फलाना काम थोड़ा हो जाएगा। इस तरह दे लोगां दे पिछे बड़ी भीड़ है, क्योंकि इस तरह दे लोगां दे पिछे चलन लई कोई उच्चा नहीं उठना पैंदा। ये भी मैं अर्ज करदे आं, कतई उच्चा नहीं उठना पैंदा। पर जे कबीर दे पिछे चलना होवे, कबीर ते घाटी दा मार्ग है, पहाड़ी रस्ता है। कबीर दा ज्ञान किसी महान अवतारी पुरुष कोल घट नहीं है, पर कबीर दे पिछे कोई भीड़ नहीं है। कबीर निवाण दा रस्ता नहीं चुनदे, इति चढ़ाइयां दा मार्ग, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। एक बिखड़ी घाटी ते मैं चढ़ रहा। कबीर कहिंदे ने मेरे अगे कोई नहीं कि मेरी ढारस बजे कि मैं इथों अगे भी कोई जा रहा है, पर मेरे पिछे भी कोई नहीं। पता है उस रस्ते नो उजड़िया होया रस्ता कहिंदे ने जिस ते कोई चले ना। कहिंदे रस्ता उजड़ गया, क्यों? कोई चलदा ही नहीं। पता नहीं दो शब्द बर्दाश्त करोगे कि नहीं। सारे रस्तियां दे ते वसेबे बड़े ने, बड़िया रौनकां ने, एक धर्म दा मार्ग ही मैनू उजड़िया होया दिखाई देंदा। इस वास्ते बेशतर चर्च सुन्ने हो गए ने, उजड़ गए ने, बेशतर मस्जिदां बिल्कुल सुनिया हो गई, सन्नाटा छाया है, और बेशतर गुरुद्वारे खाली। कोई अमृत वेले उमंग ते तरंग लेके आए होवन, इस तरह दुनिया दे सारे गुरुद्वारे च इस तरीके दे नाल गल नहीं है। इसनों एक महान शायर इंज कहिंदा है, काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कहिंदा रब दे मार्ग ते जड़े चले सन कुछ ते पहुंच गए, कुछ रस्ते च ही खप गए। एक कहिंदा हुण ते रस्ता उजड़े आया दिखाई देंदा, उजड़े आया। चलिया सी किसे वक्त रविदास, जुतियां गंढण वाले ते जुतियां बनाण वाले मोची थानू सारी दुनिया च मिलणगे। मजा ले इन्हां च कोई रविदास बैठा होवे नहीं है। कपड़े बुणन वाले ते कपड़ियां नू छिंबण वाले